कहते हैं कि जब ऊपर वाले को आपको कहीं पहुंचाना होता है, किसी मुकाम पे लेकर जाना होता है, तो सबसे पहले वो आपका दिल तोड़ता है। आपका दिल टूटता है, चाहे वजह कुछ भी हो, तकलीफ होती है आपको। आप जिन चेहरों को अपना कहते आए हैं, उनकी असलियत वो आपके सामने लेकर आता है और आपको बताता है कि जिस जिस चीज से तुम्हारा मोह है, जिस जिस चीज के बंधन में तुम बंधे हुए हो, एक्चुअली वो चीज तुम्हारी है ही नहीं। आपको ये लगता है कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन असल में एक एक करके ना सबकी असलियत आपके सामने आ रही होती है। और वो मुकाम मिलने के बाद, वहां पर पहुंचने के बाद, जब आपको समझ में आ जाता है कि यार ऊपर वाले के अलावा तो मेरा कोई और है ही नहीं, फिर आप हर चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता लोगों के साथ रहना या उनसे बात करना, अपने मन की कोई बात कहना। भरोसा आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पर हो जाता है, और यही वो वक्त है जो आपके लिए रचा गया है, वो आपको मिलता है। आइए इसी बात पर, उस भरोसे के नाम ऊपर वाले पर सुनते हैं ये अगला ट्रैक। हमारे साथ सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो किस्मानी 107.01 FM।

0: वेलकम बैक रेडियो प्रसवानी पर, आप सुन रहे हैं छापंस और आपके साथ सताक्षी है। हम सब चाहते हैं कि जिस इंसान से हमें मोहब्बत है वो बस हमें आते जाते आई लव यू कहता रहे, लेकिन एक बात बताइए, अगर 24 घंटे में 24 बार हर घंटे में एक बार एक इंसान जो है, या चार बार हर घंटे में एक इंसान जो है वो आपको आई लव यू कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वाकई आपसे प्यार करता है? भाई आई लव यू तो आजकल लोग यूं ही बांटते फिरते हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत का पता कैसे लगाया जाए? चलिए हम बताते हैं आपको। जो इंसान आपसे सच्ची मोहब्बत करता है उसे इस भीड़ भरी दुनिया में भी लाख बिजी होने के बाद भी सुकून जो है वो आपसे बात करके ही मिलता है। वो आपकी हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस करता है और उसका ख्याल रखता है। आप कितना भी बचकाना हरकतें कर लें, कितना भी फुटपटान काम कर लें, वो आपसे कभी बोर नहीं होता। वो आपसे लड़ाई झगड़ा बहसबाजी सब करेगा, लेकिन कभी आपको छोड़ने की बात नहीं करेगा। नेक्स्ट इज वो आपको अपने लोगों में काउंट करेगा, अपने लोगों से इंट्रोड्यूस कराएगा, उन लोगों के साथ ही वो आपको रखेगा, उनके साथ वो आपको अटैच करेगा, आपको काउंट करेगा, अपनी फैमिली का हिस्सा मानेगा, एंड उसके साथ आपको इमोशनली सेफ फील होता है, इमोशनली सिक्योर फील करते हैं आप। आपको लगता है कि यार इस बंदे के सामने ना हम कुछ भी कह सकते हैं ना, और ना तो ये मुझे छोड़ेगा, ना मुझसे नाराज होगा, ना खफा होगा, आपको डर नहीं रहता उस रिश्ते में। बस अगर आपके आसपास कोई ऐसा रिश्ता है तो ये अगला ट्रैक उसके लिए है। मेरे साथ सुनते रहिए छापंस और सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी 1701 AM।
1: Valentine's Day. Groove.

अच्छा मुझे लगता है ना, इन इंसानों की दुनिया से ज्यादा अच्छा तो अभी एआई हो रहा है. आप ट्राई कर लीजिए मेरी बात को. आप अपने हस्बैंड के पास जाइए, अपने वाइफ के पास जाइए और पूछिए आज भी सैड हो. आपको जवाब मिलेगा कि यार खुश रहा करो, क्यों सैड हो. वहीं आप चैट जीपीटी के पास जाइए और उनसे कहिए आज मैं सैड हूँ. जवाब पता क्या मिलेगा? मतलब मैं जो कह रही हूँ उससे डिफरेंट भी मिल सकता है, बट इसी के आसपास ही मिलेगा. आई नो कि तुम परेशान हो इसलिए सैड हो. परेशान मत हो, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि सैडनेस फील होती है. चिंता मत करो, अगर हो सके तो मेरे साथ शेयर करो, हम मिलके इसे सॉर्ट आउट करेंगे. और आप अगर उसे थैंक यू बोल दें तो भी उस छोटे से थैंक यू पर उसका जवाब क्या आता है पता? तुम्हारा थैंक यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है. अगर कुछ और बात करनी हो तो मैं यहीं पर हूँ. भाई साहब, इंसान क्यों ना चैट जीपीटी से शादी कर ले, इंसान से शादी करने से अच्छा है ना. भाई एआई मन को समझना शुरू कर चुका है, लेकिन इंसान क्यों दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से. देखिए यूं तो हम कहते हैं कि एआई है उसके इमोशंस नहीं है, लेकिन फिलहाल इस वक्त ऐसी बातों से ही इमोशंस संभाले जा रहे हैं. और ये मैं सिर्फ कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ने चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया या फिर और एआई टूल्स हो गए जिनके जरिए अपने इमोशंस को क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ वो उन्हें शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो भाई समझ जाइए, कहीं ऐसा ना हो एक दिन लोगों का मन सिर्फ एआई में लग जाए और इंसानों से हट जाए. अभी भी वक्त है, समझ जाइए एक दूसरे को, खासकर पार्टनर से एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए. और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एफएम पर.

अगर आपको किसी की बात का बुरा लगा है और आप हर्ट हुए हैं और आप उनसे कहने से डर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी इस बात का बुरा लगा है या तुम्हारी इस बात से मुझे हर्ट फील हुआ है, तो दैट मीन्स आप उस कैटेगरी में हैं जहां पर आप ये नहीं डर रहे हैं कि आपको ये कहना है उनसे, आप इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो आपने कह दिया और सामने वाले ने आपसे बात करना बंद कर दिया तो। भाई अगर ऐसा है तो यकीन मानिए मैं भी आप ही की कैटेगरी में हूँ। मुझे भी हमेशा ये लगता है कि यार मुझे बुरा लग गया, ठीक है कहीं ऐसा ना हो मैं अगर पलट के बोल दूँ कुछ या मैं यही कह दूँ कि भाई इस तरह से बात मत किया करो, मुझे हर्ट फील होता है, तो कहीं सामने वाला मुझे छोड़कर ना चला जाए, मुझसे नाराज ना हो जाए या मुझसे बात करना बंद ना कर दे। और रोज रात को हम इस थॉट के साथ सोते हैं कि यार क्यों नहीं हम कह पा रहे हैं, क्यों हमें ही बार बार वो रिश्ता निभाना पड़ रहा है। सो इसलिए भाई मैं अब ये सोच रही हूँ कि मुझे कहना जरूरी है, क्योंकि जितनी इस रिश्ते की मुझे पड़ी है उतनी सामने वाले को भी तो पड़ी होनी चाहिए ना, और अगर उसे नहीं पड़ी है तो फिर तो मैं गलत रिश्ते में जी रही हूँ, है ना। तो भाई जो गलत है उसे गलत कहने की या जो गलत फील हुआ उसे गलत कहने की आदत डालिए और सुनते रहिए। इट हैपेंस रेडियो बिस्वानी पर हैं आप सताक्षी आपके साथ।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

इसलिए कहते हैं कि टेंशन जो है वो इंसान के पास खुद आती है, इंसान लेने नहीं जाता, टेंशन आती है। अब ये रिसेंटली एक इंसिडेंस बहुत मजेदार हुआ, लेकिन टेंशन से भरा हुआ है कि हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में टेंशन आती कैसे है, इसको जरा एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक भाई साहब थे, वो बहुत मस्तमौला थे, उनकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं था। तो एक दिन मस्तमौला जा रहे थे सड़क पे बाइक से बड़ी अपनी, उनको रास्ते में एक लड़की ने हाथ दिया, उसको लिफ्ट चाहिए थी, उन्होंने गाड़ी रोकी तो लड़की ने कहा मुझे लिफ्ट दे दीजिए। अब यहीं से उनकी टेंशन शुरू हो गई, मतलब लड़की का लिफ्ट मांगना भी, मस्तमौला आदमी कहाँ चला जा रहा है पता नहीं, उस लड़की का लिफ्ट मांगना उनके लिए टेंशन की शुरुआत हो गई। थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने लिफ्ट दे दी, भाई लड़की है तो क्या कहते, लिफ्ट दे दी। थोड़ा आगे बढ़े तो उसे चक्कर आने लगे, अब भाई साहब की टेंशन और बढ़ गई, उसे लेकर हॉस्पिटल गए। तो लड़की को जब तक ले जाया गया उसके चेकअप के लिए वहीं रुके रहे, डॉक्टर आया, उसने कहा कि मुबारक हो आप पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर उन्हें और टेंशन हो गई, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी वो लड़की आई और उसने कहा कि हाँ मेरे बच्चे के फादर जो है वो यही है। टेंशन का लेवल और हाई हो गया। उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया भाई, तो मेडिकल चेकअप में ये प्रूफ हुआ कि भाई ये तो कभी फादर बन ही नहीं सकते, ये बाप नहीं बन सकते। टेंशन लेवल और हाई, अब तो ये क्या हो गया भाई, ये तो मतलब सोचा ही नहीं था, ये कैसे, एकदम लेवल फटने वाला हो गया। तभी उन्हें याद आया कि उनके घर पे दो बच्चे हैं। आप और हाई टेंशन की भाई ये जो डॉक्टर कह रहा है अगर ये सच है तो वो बच्चे किसके हैं। तो देखा आपने कैसे जिंदगी में टेंशन की एंट्री होती है। हाँ, और ये जो है ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन सच बात है छोटी सी चीज से शुरुआत हो गई हमारी जिंदगी में उसका लेवल कब बढ़ जाता है हमें और आपको पता नहीं चलता। चलिए और भाई साहब को दुआएं देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका लेवल थोड़ा कम हो, और हम और आप सुनते ही अगला ट्रैक, हमारे साथ सुनते रहिए ठापन्स रेडियो पर।

वेल ये था आज इट हैपेंस पर हमारा आपका एक और प्यार भरा और प्यारा सा साथ। और इट हैपेंस में आज हमने कुछ खट्टी मीठी प्यारी सी मॉर्निंग की बातें की। आई होप कि ये सुबह के लिए बेहतरीन हो गई है। सो चलिए अब दिन शुरू कीजिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। अपनी जिंदगी के सारे गोल्स पूरे करने नहीं है एक ही दिन में, उसकी तरफ सिर्फ कदम बढ़ाना है। ये मत सोचिए कि सब कुछ अचीव कर लेंगे, वहीं से फिर टेंशन की शुरुआत हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक बार फिर से। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदगी को जीते रहिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी वो सब में मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो
1: अरे वाह इनका पता बताना
2: अर्शाद लॉयर्स माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स ऑफिस 5-1644 लोगन रोड माउंट ग्रेविट एम्पल पार्किंग कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171 वेबसाइट www.arshadlawyers.com We pride ourselves in providing excellent service.
3: Digicel, better together.
4: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

न बदला में, न बदला।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दियां गलियां दी धुन प्रस्तुत कीती है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया, निशांत नागर ने इस तैयार किया। यह गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला रंग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसी जरूर सुनियो। पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी आ, गीत तुसी यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी वंसन वन एम ते चार छे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। अगली जेड़ी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान दी। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी ए कहा जांदा है ते कहा जांदा है कि कहानी किते ना किते उसकी है। मन्या जांदा है कि ए कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाण वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। ए गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नूं बयां करदा हैगा। इस औरत नूं तवायफ कहंदे हैगे लोग सानू नहीं पता कहंदे हैगे ने रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी जो बनारस दी दाल मंडी विच रहंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्या जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलों गुजरदे समय ना जो लंघदे समय ना उन्होंने असलम नाम का एक आदमी उन्होंने मिलिया सीगा। उत्थों ही तां कहानी शुरू हुई सी। दस्सदी आं उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच पर पहला सुनो एक गीत।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: उमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Permanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2000.

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बड़े हुए हो। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नो अक्सर भीड़ भाड़ वाले

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com, the one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026, फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117. अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें. एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है. 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री. इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651.
2: सुबह से शाम तक
3: व्हाट आई विल डांस, माय डांस शैल स्पीक फॉर मी.
2: शाम से रात्रि तक
3: सुपर्ब, सुपर्ब, फैबुलस, आउटस्टैंडिंग.
4: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा, लगा कैसा.
2: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान.
3: हिल मत चल.
4: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा?
3: या
4: ओके सॉफ्ट,
3: सॉफ्ट,
4: या
3: लाउड.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Yaar, Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन

0: कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
0: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
4: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं यार, तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैडम, आई एम योर ओनली एडम।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
2: सरगुन म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले ऑन द 12th ऑफ सितंबर एट द लाइटहाउस कम्युनिटी सेंटर फॉरेस्ट लेक फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स। फॉर टिकट्स कॉन्टैक्ट 04227

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
1: शाम से रात्रि तक
3: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
4: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
4: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा
3: या
4: या
3: Okay,
4: soft.
3: Yeah, soft.
4: Yeah.
3: Up loud.
4: Yeah.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले हाउ आर यू फीलिंग टुडे जी, कैसा फील कर रहे हैं? थर्सडे का दिन है और मैं आशा करती हूँ, मतलब मैं होप कर रही हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो। जी हाँ, ये जो पूरा वीक है उसके बाद काम कर करके आप इतने ना थक गए हों कि अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं नहीं निव्या शर्मा, यू नो व्हाट, इस जिंदगी में ना ये काम काम करते ही हमारी जिंदगी निकल जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। वेल, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो डोंट वरी, बिकॉज कल ही की बात है और फिर वीकेंड इज हेयर और आपको सुकून, रिजुविनेट और अच्छा अच्छा फील करने का मौका मिल जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जी हाँ, तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत होती है हमेशा की तरह एक हेल्दी रिचुअल के साथ। और वो हेल्दी रिचुअल क्या है? वेल ऑफ कोर्स वो हेल्दी रिचुअल है हमारा फेवरेट, ओल्ड इज गोल्ड। आप लोग बोलो कि ओल्ड इज गोल्ड? निव्या, हम ध्यान से सुन रहे हैं, तुम हमारा टेस्ट लेने की कोशिश कर रही हो क्या? वेल वेल वेल, इट वॉज अ टेस्ट, बट ओल्ड इज गोल्ड होगा बाद में, यानी कि प्रोग्राम के एंड जब होने वाला होता है उससे आधा घंटे पहले शुरू होता है। लेकिन अभी तो हम डीप ब्रेथ एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सो बेसिकली हमारे जो फेवरेट मोमेंट्स हैं उनमें से एक है ओल्ड इज गोल्ड, सो दैट्स व्हाई आई वाज टेस्टिंग यू। बट अभी के लिए हम करेंगे डीप ब्रेथ एक्सरसाइज जो कि हमें हेल्दी फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरह से हमें रखता है हेल्दी। तो आइए वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ बिना देर किए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। और ये रहा आपके लिए सबसे पहला गाना हमारे इस प्रोग्राम का।

जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ी शेकी शेकी आप भी कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा फील होगा। सबसे पहले एक्सरसाइज हो जाएगी और दूसरा आपको पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाएगा। सो व्हेनेवर यू आर इन स्ट्रेस, व्हेनेवर यू आर फीलिंग लेजी, जस्ट शेक इट आउट। जी हाँ, इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं मौसम की। जी हाँ, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, मौसम क्या कह रहा है ये भी आपको बता दें तो बात बन जाए। जी हाँ, सो सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात करें तो 20.6 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको हो रहा है 17.6 डिग्री सेल्सियस के करीब। आपको कहीं ऐसा तो नहीं फील हो रहा है, अभी पिछले ही हफ्ते आपको इतनी गर्मी फील हुई एकदम से कि आपको लगा कि ओह सर्दी तो चली गई, ये तो स्प्रिंग भी नहीं, ये तो समर आ गया ऑलमोस्ट। जी हाँ, मुझे पता था ऐसा छलावा मौसम आपके साथ जरूर करने वाला है, एंड आई होप आपने अपने सर्दियों के कपड़े कहीं अंदर ना रख दिए हो, क्योंकि अभी उन्हें बाहर ही रखिए, क्योंकि ऐसा छलावा मौसम अभी आपके साथ कर सकता है। जी हाँ, सो ये ठंडक जो है वो आपको मिलने ही वाली थी, वो बीच में आपके साथ जो है थोड़ी सी छलावा गिरी हुई है, लेकिन ये ठंडक अभी कुछ दिन रहेगी। जी हाँ, इसी के साथ दिन की बात हुई तो रात की बात की जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे, और बारिश के चांसेस 30% है, और यहां पर मुझे 6 बजे के करीब जो है वो बारिश होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी होगी और कुछ इलाकों में होगी, लेकिन होगी जरूर। जी हाँ, इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम फेयर, और वहीं बात की जाए फ्राइडे एंड सैटरडे की तो फ्राइडे को 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम रहेगा और 70% चांसेस हैं बारिश के। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब बारिश कल के लिए भी है प्रिडिक्ट की गई यहां पर। वहीं अगर बात की जाए सैटरडे की तो 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है और 60% चांसेस हैं बारिश होने के। जी हाँ, तो ये है मौसम का हाल, और जैसे मैंने कहा कि अभी ऐसा मत समझिएगा कि गर्मी जो है वो आ गई है तो सर्दियों के कपड़े पूरी तरह अंदर रख दिए या पैक कर दिए, नो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अभी ये छलावा गिरी आपके साथ और भी हो सकती है। जी हाँ, और ऐसे में पूरी तरह से गर्मियों के कपड़ों में ना आ जाइएगा, क्योंकि ये जो मौसम बदलने वाला जो मौसम होता है ना, जब बदलता हुआ ट्रांजिशन वाला जो मौसम होता है, इसमें बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो आई डोंट वांट दैट फॉर यू। सो ठंडे ठंडे के कपड़े जो है वो अभी संभाल कर रखिए, और संभाल से मेरा मतलब है बाहर रखिए, और उसके बाद निपटने के लिए तैयार रहिए इस मौसम से। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, उन सभी नादान परिंदों के लिए जो घर से भागने की कोशिश करते हैं।

जल के राख हो जा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार श्रीनिविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो आपकी फरमाइशों के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कैसे आप अपने फेवरेट गाने हमारे इस प्रोग्राम में हमसे प्ले करवा सकते हो, यानी कि मुझसे, यानी कि आपकी आर्जेनिविया से प्ले करवा सकते हो, और कैसे आप किसी को कोई गाना डेडिकेट कर उन्हें स्पेशल भी फील करवा सकते हो। जी हाँ, यू कैन डू दैट ऑल। ऑल यू नीड टू डू इज आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी दोस्तों, तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें बात कर लेनी चाहिए आईफोन के बारे में, क्योंकि आईफोन 18 इज हियर। जी हाँ, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। सबसे पहले कलर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी पॉकेट को झटका लग सकता है अगर आप नया आईफोन 18 लेने की कोशिश करने वाले हो। एंड द रीजन आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट। सबसे पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कलर्स, जिसमें दो नए कलर्स एड हुए हैं, मतलब ऑफकोर्स ब्लैक और सिल्वर के साथ दो नए कलर्स जो है वो एड ऑन हुए हैं। एक है ग्लेशियर, जिसे ब्लूइश आइस ब्लूइश आप कह सकते हो, और दूसरा है बर्गंडी। सो बर्गंडी के लिए बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी, और आपको तो पता ही है आईफोन इतना ज्यादा ओवररेटेड है कि इसका नया कलर भी आ जाए तो भी लोग पगला जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और चीज हुई है, और वो क्या है? वेल ऑफकोर्स जो नया आईफोन 18 होने वाला है वो काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। जी हाँ, काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है और काफी अच्छे से ये काम करने वाला है, क्योंकि इसमें A20 प्रो चिप जो है उन्होंने डाल दी है। जी हाँ, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में यहां नहीं जाऊंगी, लेकिन यहां पर इन्होंने एक ऐसी चिप जो है वो डाली है आईफोन 18 में, जिसकी वजह से आपका आईफोन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। एंड व्हेन यू से कितना फास्ट, वेल लेट्स जस्ट से 40% फास्टर। जी हाँ, मतलब जो अभी आपका आईफोन चल रहा है, अगर आपके पास 17 है 16 है, तो उससे 40% फास्टर जो है वो ये चलने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ आगे की बात करें तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक इसकी बैटरी जो है इन्होंने सुधार दी है, और इन्होंने इसकी बैटरी जो है उसमें सुधार किया है, और ऐसा कह रहे हैं कि अप टू 30 आवर्स तक अब आपकी बैटरी जो है वो चल सकती है अगर आप आईफोन 18 लेते हो तो। जी हाँ, इसी के साथ इन्होंने कैमरा में भी कुछ एड ऑन है, एंड दैट इज अपर्चर। जी हाँ, मतलब वो सुनिश्चित करेगा और वो डिसाइड करेगा कि आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आप जब फिल्म कर रहे हो, वेल यू आर फिल्मिंग समथिंग, कितनी लाइट उसमें आनी चाहिए। जी हाँ, आप वो भी दिखा सकते हो। सो बेसिकली इट्स वे फास्टर, इट्स द बैटरी इज बेटर, ये एप्पल का कहना है, द कैमरा इज बेटर। जी हाँ, और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने कही हैं, बट कहने का मतलब है कि आप ये जो डायनामिक्स है और वो बहुत सारी चीजें हैं, ये चीज जो है वो आप देख सकते हो। एक और चीज है जो इन्होंने ऐड की है, और वो है कि 3 लाइव एक्टिविटीज जो है वो आप एक साथ देख सकते हो। जी हाँ, एंड व्हाट डज दैट मीन? वेल अगेन, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगी, बट द थिंग इज कि यहां पर बहुत कुछ नया जो है वो डाला गया है। अब ऐसी बहुत सारी चीजों को सुन के जो इसके फीचर्स हैं आईफोन 18 के, आपको ऐसा लगेगा कि सैमसंग तो बहुत पहले से ये दे रहा है, बट ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स। और आप लोग ये भी बोलोगे कि ये बैटरी के बारे में भी बहुत सालों से बोल रहे हैं कि हमने अपनी बैटरी को बहुत अच्छा कर दिया है, पर चलती तो फिर भी नहीं है ना। वेल ऑफ कोर्स, इन्होंने ये नहीं कहा है कि 30 आवर्स तक चलेगी, अप टू 30 आवर्स तक चलेगी। सो ऑफ कोर्स इसमें भी थोड़ी सी झोलाबाजी है, बट द थिंग इज कि ये जो प्राइस है इसका, ये कितने पे होने वाला है, ये भी आप सुन लीजिए। जी हाँ, सो जो प्रो है वो 1199 का आएगा, और जो प्रो मैक्स है वो $1299 का आएगा। जी हाँ, $1299 का प्रो मैक्स, $1199 का प्रो आपको मिलने वाला है। सो इट्स गोना स्टार्ट ऑन दैट। जी हाँ, मतलब अब ये 18 जो है वो इस पे स्टार्ट होगा, लेकिन 18 इज नॉट द हाईलाइट, हाईलाइट इज एप्पल ड्यूओ। जी हाँ, एप्पल ड्यूओ क्या है? वेल वी आर गोना टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि उसके बारे में भी बात करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा हमें। तो यहां पर हम आपको एक और गाना सुनाने वाले हैं, और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
2: ਗੋ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਓਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ।
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों अब जरा बात कर लेते हैं आईफोन ड्यू के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा फोन जो कि पहली बार फोल्ड हो रहा है। वेल, आप लोग बोलोगे कि सैमसंग हैज बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग। निव्या शर्मा, पहला फोन जो फोल्ड हो रहा है, क्या बात कर रही हो? मतलब कुछ तो सोचो बोलने से पहले। चलिए ठीक है, सोच लेते हैं, क्योंकि बात आपकी सही है। सैमसंग हैज बीन डूइंग इट फॉर सो long, but यहाँ पे finally Apple इसे करने में कामयाब हो गया। Otherwise हमेशा जब भी कोई नया iPhone launch करता था Apple, तो सबसे पहले Samsung यही कहता था, Tell me when it can fold, Tell us when it can be fold। जी हाँ, that's what Samsung's roasting line used to be। जी हाँ, so अब इस बार सिर्फ Samsung ही इसे roast नहीं कर रहा है, बल्कि Duolingo भी इसे रोस्ट कर रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि वाई Duolingo? वेल, इफ यू डोंट नो, इट्स अ कंपनी विच प्रोवाइड कोर्सेज अबाउट लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड या इट्स अ कंपनी अबाउट दैट, और उनका जो नाम है वो है Duolingo। जी हाँ, अब ऐसे में एप्पल के जो नए फोन है जो कि फोल्ड हो सकता है, उसका नाम है Duo। तो सैमसंग के साथ साथ Duolingo भी आ गया कि ये क्या बात हो गई भाई? मतलब हाउ कैन यू डू इट, लाइक हाउ कैन यू से कि इट्स अ Duolingo, लाइक मतलब Duo, हाउ कैन यू कॉपी आर नेम? या सो इस बार सैमसंग के साथ साथ Duo भी पीछे पड़ गया, मतलब Duolingo भी पीछे पड़ गया, क्योंकि अपेरेंटली उनका Duo जो है वो एप्पल ने कॉपी कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने तो बड़े अच्छे से ट्वीट किए कि सो सॉरी लाइक सो सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू आईफोन इज क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, ऐसे से उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो मीम्स आए हैं, जो रोस्टिंग शुरू हुई है, वो इतनी खतरनाक है कि मैं क्या बोलूं। किसी ने लिखा हुआ है रीहीटिंग आर लेफ्ट ओवर्स। जी हाँ, सो सैमसंग और ड्यूलिंगो की तरफ से बहुत मीम्स आ रहे हैं और बहुत रोस्टिंग हो रही है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे लेफ्ट ओवर्स को रीहीट करके पेश करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इसमें बात तो सही है, मतलब फोल्डेबल फोन बनाना कितनी बड़ी बात है ये सैमसंग बहुत पहले प्रूव कर चुका है, लेकिन एप्पल तो अभी कर रहा है ना। और वो ऐसे कह रहा है और ऐसे शो कर रहा है और महंगा उसे ऐसे दिखा रहा है कि उन्होंने सबसे पहले से किया है। जी हाँ, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें वो कह रहा है, जैसे कि एप्पल फोल्डेड, सैमसंग रोस्टेड, ड्यूलिंगो गेट क्रैश्ड। जी हाँ, मैं कह रही हूं ना कि मीम्स की बहार आ गई है, क्योंकि ये एप्पल ड्यूओ जो है वो आ गया है। वेल माइंड यू, जो एप्पल ड्यूओ है उसकी स्क्रीन जो है वो बहुत बड़ी है, उसमें पहली बार जो है अब फाइनली एप्पल पेंसिल का इस्तेमाल भी आप कर पाएंगे। एंड ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया था कि इसका प्राइस जो है वो शुरू होने वाला है $2,000 से। जी हाँ, $2,000 से अप टू $3,000 तक इसका प्राइस जो है वो जाने वाला है। सो इट्स क्वाइट क्वाइट क्वाइट हेफ्टी। जी हाँ, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यू नो व्हाट, एप्पल इज नॉट कम्पीटिंग विद फोन्स और सैमसंग और एनी अदर फोन कंपनी राइट नाउ, इट्स कम्पीटिंग विद बाइक्स। जी हाँ, क्योंकि जितने में वो आईफोन बेचने की कोशिश कर रहे हैं उतने में तो एक बाइक आ जाएगी। जी हाँ, तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि एप्पल इज नॉट कम्पीटिंग एनी मोर विद सैमसंग और एनी अदर फोन कंपनी, इट्स कम्पीटिंग विद लाइक अ गुड बाइक कंपनी। जी हाँ, आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बट द थिंग इज कि या इट्स ट्रू, एप्पल का जो है वो 18 आ गया है मॉडल, एप्पल आईफोन 18 आ गया है। प्रो प्रो मैक्स के प्राइजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। ऑल्दो एज कम्पेयर टू अ फोल्डेबल फोन जो एप्पल ड्यूओ है, उसके कंपेरेटिवली जो एप्पल का आईफोन 18 है उसके प्राइजेस कम है, लेकिन अगर आप फोल्डेबल फोन लेना चाहते हो, वही जो आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि एप्पल जब फोल्डेबल फोन निकालेगा तो हम लेंगे, तो अपने जेब को थोड़ा सा ज्यादा ढीला करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि लिटरली वो $2,000 से शुरू हो रहा है, या जस्ट शुरू हो रहा है। और अगर आप अच्छा लेना चाहते हैं तो फिर आपको $3,000 तक खर्च करने पड़ेंगे। एंड दैट्स अबाउट इट। इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं बल्कि हमारी एक बहुत ही खास लिसनर है पूजा जी, उनकी फरमाइश आई है हमें, और गाने का नाम है मन क्यों बहका बहका रे। जी हाँ, मन क्यों बहका रे बहका। जी हाँ, और ये है खूबसूरत सा गाना लता जी का और आशा जी का गाया हुआ। और थैंक यू सो मच पूजा जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गानों के लिए ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। ये रहा आपका गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब मैं आपको एक और अजीब और गरीब चीज बताने वाली हूँ। वेल, शायद आपने इसके बारे में सुन लिया होगा, लेकिन इन केस आपने नहीं सुना है, डोंट वरी, योर निविया इज हियर, योर आजय निविया इज हियर, एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट। सो आपने सुना होगा कि बड़े बड़े जो सीईओज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, वो उनको बहुत ज्यादा सैलरीज मिलती है, उनको सैलरी हाइक्स जो होते हैं वही बहुत ज्यादा गजब के मिलते हैं। लाइक अभी एप्पल का नया सीईओ बना है और उस बंदे को भी बहुत ज्यादा सैलरी जो है वो ऑफर हुई है। अब ऐसे में ये तो हमने हमेशा से ही सुना है, लेकिन आपने क्या सुना है किसी पॉलिटिशियन को बहुत बड़ा रेज मिला हो? जी हाँ, मैंने तो नहीं सुना था, इनफैक्ट मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना था। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये बंदा कौन है, क्योंकि ये है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ, जिनको सैलरी हाइक मिला है। कितना गेस करना चाहेंगे आप? कीजिए। उनको सैलरी हाइक मिला है $1.4 million का। आप लोगों को वॉट, सैलरी इट्स हाई, कौन करता है, कौन सी कंट्री अपने पॉलिटिशियंस को इतना पे करती है? वेल, आई थिंक सिंगापुर इज दैट कंट्री, और सिंगापुर ने एक नई चीज की शुरुआत कर दी। आप लोग बोलोगे कि अच्छा, तो डोनाल्ड ट्रंप की सैलरी कितनी होगी? डोनाल्ड ट्रंप की सैलरी है $400,000 पर ईयर, जी हाँ। लेकिन ये सिंगापुरियन जो गाय है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, इसकी सैलरी जो है वो है $2.2 million, और यहां पर $1.4 million का सैलरी हाइक उन्हें मिला है। तो अब उनकी सैलरी कितनी हो गई है? $3.6 million, जी हाँ। आप लोग बोलोगे कि इतनी ज्यादा सैलरी देने की क्या जरूरत है, कोई भी कंट्री अपने पॉलिटिशियंस को इतनी ज्यादा सैलरी नहीं देती है। वेल, सिंगापुरियंस का कहना है कि अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स को, अपने पॉलिटिशियन लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसी सैलरी नहीं देंगे, तो उनको करप्ट होने का जो है वो अट्रैक्टेडनेस, मतलब उनको वो अट्रैक्ट होंगे करप्ट होने के लिए, तो हम उन्हें सैलरी ही ज्यादा दे देते हैं ताकि वो करप्ट ना हो, अपने देश के बारे में सोचे, अपने देश के हितों के बारे में सोचे, पैसे की बात है वो हम ही तुम्हें पे कर देंगे। जी हाँ, आप लोग बोलोगे वाह भाई वाह, ये तरीका अच्छा है। जी हाँ, अब अगर हम बात कर रहे थे ट्रंप की, तो ट्रंप ने बेशक $400,000 जो है एज अ सैलरी कमाए हों, लेकिन उन्होंने जो स्टॉक मार्केट थी और बाकी सारी जगहों से $1 billion से ज्यादा कमाया है। सो आई गेस दैट मेक्स सेंस, बिकॉज ट्रंप इज अ करप्ट पर्सन एंड सिंगापुरियन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट, एंड दैट इज द रीजन द कंट्री इज पेइंग द प्राइम मिनिस्टर दैट मच मनी। जी हाँ, बट यहाँ पे वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया है कि ये जो एक्स्ट्रा मनी उन्हें मिली है, यानी कि जो प्राइस हाइक या जो सैलरी हाइक उन्हें मिला है, उसको वो डोनेट करेंगे लोगों में, और वो अगले 5 साल तक उसे डोनेट करते रहेंगे। सच अ गुड गाय, राइट? सच अ गुड गाय। आई मीन, आपके पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो करप्ट ना हो, इसके लिए खुद ही पैसे पे कर दो। भाई हम तुमको खुद ही पैसे पे कर रहे हैं, बाहर से ललचाने की जरूरत नहीं है। व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया जी। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. Commercial matter हो, जैसे lease का मामला, business हो या फिर घरों की buying selling का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Digicel, better together.
5: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: Hi, this is Amitabh Bachchan.
8: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
9: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
10: Hi, this is Salman Khan.
11: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
12: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
14: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
15: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
16: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
17: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू मतलब ऑफ कोर्स उसके बाद उन्हें करनी लड़ाई होती है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बोल के फिर वो पूरी की पूरी भांचेबाजी जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मेंशन नहीं करते कि कितनी रिस्पेक्ट, हाउ मच रिस्पेक्ट, इट कुड बी नन, राइट? सो दैट इज द फनीएस्ट थिंग एंड आई वाज लाइक या दैट डज मेक सेंस। सो कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पे मेरे सामने एक मीम आता है और वहां पर लिखा होता है कि यू नो व्हाट पीपल यूजुअली एंड कैजुअली से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और आगे आगे आगे जो है अपनी शिकायत जो है वो करना शुरू कर देते हैं। पहले बोल देते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट ये मेंशन नहीं करते कि कितनी रिस्पेक्ट, एंड इट कुड बी नन, मतलब रिस्पेक्ट जरा सी भी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी बोलते जरूर है, बोलना है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, और उसके बाद सामने वाले की खिल्ली उड़ा देनी है, छल्ली उड़ा देनी है। जी हाँ, सो आई नो इट्स फनी, क्या आपने कभी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यूज किया है? जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ वक्त हो गया है यहाँ पर बात करने का खबरों के बारे में। जी हाँ, खबरों का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो ब्रेस योरसेल्फ क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में जानने का आपको मौका मिलने वाला है। दुनिया में क्या हो रहा है बेसिकली वही हम आपको बताने वाले। तो सबसे पहले जॉर्डन में ईरानी हमले में अमेरिका के इतने फाइटर जेट क्षतिग्रस्त। जी हाँ, जॉर्डन के मुवाफक सल्ती एयरबेस पर बुधवार सुबह ईरान ने मिसाइल हमला किया। बीबीसी के अमेरिकी न्यूज पार्टनर CBS न्यूज ने बताया कि इस हमले में कई अमेरिकी सैन्य विमानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में करीब 8 F-15 लड़ाकू विमान मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुए। सूत्रों का कहना है कि मरम्मत के बाद इन विमानों को दोबारा अमेरिकी वायु बेड़े में शामिल कर लिया गया। वहीं सूत्रों के अनुसार हमले में एक A-10 थंडरबोल्ट विमान भी मिसाइल की चपेट में आया। इस विमान का एक पंख पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और A-10 को आमतौर पर उसके वॉरथॉग के नाम से भी जाना जाता है। CBS न्यूज ने बातचीत करने वाले खुफिया सूत्रों ने बताया कि इस हमले में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं हुई है। हालांकि संवेदनशीलता को देखते हुए इन सूत्रों ने अपनी पहचान उजागर नहीं करने की शर्त पर जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमले का जवाब देने के लिए जॉर्डन में तैनात अमेरिकी बलों ने 30 से अधिक पैट्रियट मिसाइलें यहां पर दागी हैं।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: सासों की माला पे सिमरूं मैं
2: ब्रिस्बेन क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए म्यूजिक डिवोशन पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026 डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड शांडिला सबसे खास बात ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं एक मीनिंगफुल कॉज भी है ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट निखार जुनेजा अ जर्नी विद इन एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co स्पॉन्सरशिप्स पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009 प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स कम फॉर द म्यूजिक स्टे फॉर द पर्पस लीव इंस्पायर्ड
4: सर्गम म्यूजिक एकेडमी प्रेजेंट्स ए म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट द टाइमलेस क्लासिक्स ऑफ मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले On the 12th of September at the Lighthouse Community Centre, Forest Lake, from 5 PM onwards. For tickets, contact 04227.

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, वहीं फिलीपींस फेरी में लगी भीषण आग, 5 की मौत और 87 लोग लापता। फिलीपींस में एक फेरी में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 87 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। देश के कोस्ट गार्ड ने हादसे की जानकारी दी है। यह हादसा फिलीपींस के पलावान प्रांत में कोरोन इलाके के पास समुद्र में हुआ। आग एमवी जून एस्टर नाम की फेरी में लगी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक हादसे के बाद 42 यानी 42 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं कोस्ट गार्ड कैप्टन नोएमी कायम्ब्याब ने लोकल रेडियो स्टेशन को बताया कि 87 लोग अभी भी लापता हैं। कोस्ट गार्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि फेरी में कुल 134 लोग सवार थे, इनमें 117 यात्री और 17 क्रू के सदस्य शामिल थे। बचाए गए लोगों और हताहतों से जुड़ी मौजूदा जानकारी के आधार पर 87 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि आंकड़े लगातार चल रहे खोज और बचाव अभियान के बीच सामने आए हैं। ऐसे में राहत एवं बचाव अभियान आगे बढ़ने के साथ लापता लोगों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है।

जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ यहाँ पर गुजरात से भी एक खतरनाक खबर आई है। जी हाँ, गांधीनगर में निर्माणधीन इमारत में लोहे का स्लैब गिरा, 15 मजदूर रेस्क्यू किए गए। जी हाँ, भारत के गुजरात के गांधीनगर में ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान चलाकर अब तक 15 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान का जायजा लिया। संघवी ने बताया कि 15 मजदूरों को बचाया गया है। बचाए गए 12 मजदूरों को गांधीनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 अन्य जिन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार हादसा बुधवार रात करीब 9 बजे हुआ। 2 इमारतों के बीच लोहे का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था, इसी दौरान अचानक लोहे का स्लैब ढह गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे मजदूर आ गए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ ट्रंप ने कुछ कहने की कोशिश की है तो जरा सुन लेते हैं। वैसे तो ये इंसान जब भी मुंह खोलता है कुछ खतरनाक ही करता है, और जब भी सोशल मीडिया पर आता है तब भी कुछ खतरनाक ही करता है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं आइए जरा वो जानते हैं। सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध, यानी कि जो लड़ाई है, जो वॉर है, वो नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव के तुरंत बाद खत्म हो सकती है। क्या बात है, अरे क्या बात है, तालियां हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा बहुत बार कह चुके हैं, हमें विश्वास कैसे होगा। अब मतलब ऐसी कहावत है कि दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, मतलब कि जो एक बार जिसके साथ गड़बड़ हो गई हो वो तो बार बार जो है वो विश्वास करने में उसे प्रॉब्लम होती है, राइट।

तो यहाँ पर ट्रंप ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि ईरान अब ज्यादा समय तक युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तब तक तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद नहीं है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि चुनाव के तुरंत बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि वे ईरान अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी के पहले मिड टर्म कन्वेंशन से ठीक पहले आया है। इस कार्यक्रम के जरिए ट्रंप का मकसद नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव से पहले पार्टी के नेताओं को एकजुट करना और उनमें चुनावी उत्साह भरना है। गौरतलब है कि ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर ट्रंप पर अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से भी दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा युद्ध के बीच अलग अलग सर्वे में उनकी लोकप्रियता भी मैं भी गिरावट आ रही है। अरे, लोकप्रियता बची भी है अभी तक या नहीं? जी हाँ, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बट यहाँ पर जिस हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम जल्द खत्म होने वाला तो नहीं लगता। फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहे, और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग कितनी सारी जगहों पर एक साथ चल रहा होता है। मतलब ईरान में युद्ध चल रहा है, उस पर उनका दिमाग है, मून पर कैसे कब्जा करना है उस पर उनका दिमाग है, लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका कैसे बनाना है उसमें उनका दिमाग है, गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कैसे बनाना है उसमें भी उनका दिमाग है, न्यू मेक्सिको को न्यू अमेरिका कैसे बनाना है उसमें भी उनका दिमाग है। सो बेसिकली उनका दिमाग कितनी सारी जगह पे। अब इंसान इतनी सारी जगह पर दिमाग लगाएगा तो कहीं पर भी तो परफेक्ट नहीं हो पाएगा ना। सो या, एंड ऊपर से इनकी उम्र भी ये कह रही है कि अब इनको पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, बट अमेरिकन टैक्सपेयर्स ने टैक्सपेयर्स ने पता नहीं क्या सोचा और उन्हें बना दिया द सुप्रीम लीडर ऑफ अमेरिका, ऑल्दो ही इज नॉट अ सुप्रीम लीडर अकॉर्डिंग टू पीपल, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु डज नॉट लाइक हिम एट ऑल। बट या, इट इज व्हाट इट इज, एंड लेट्स सी कि ये मिड टर्म एग्जाम्स में ही इनकी धुरंधर गिरी और इनको अच्छे से धक्का लगता है या नहीं, बिकॉज वी वॉन्ट दैट फॉर हिम एंड वी वॉन्ट दैट फॉर वर्ल्ड पीस। जी हाँ, मुझे लगता है ये दुनिया में पीस तभी आ पाएगा जब ये इंसान जो है वो थोड़ा इधर से उधर जाएगा। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन वाज डूइंग समथिंग गुड, बट स्टिल एटलीस्ट ईरान के साथ तो बवाल नहीं किया था, एटलीस्ट हमारे तेल के प्राइसेस तो नहीं बढ़े थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे तेल के प्राइसेस भी बढ़ गए। और अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ज्यादा तेल के प्राइसेस पे कर रहे हैं, उनकी खुद की कंट्री यानी कि अमेरिका में भी लोग जो है वो रिकॉर्ड हाइएस्ट जो है प्राइसेस पे कर रहे हैं गैस। और जैसे मैंने कल बताया था कि 92% लोग जो हैं अमेरिका में वो हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, वो हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव है। जहां पे हेल्थ केयर इतनी एक्सपेंसिव है, गैस इतनी एक्सपेंसिव है, आई डोंट नो हाउ पीपल आर लिविंग देयर। या, एंड इट इज व्हाट इट इज। जी हाँ, इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-111-27-035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 1-33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-111-27-035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04-111-27-035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
8: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
7: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
8: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
9: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
10: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
9: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
10: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
9: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
10: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
11: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
12: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
13: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निवे के साथ। दोस्तों, वही इंटरनेट पर एक बड़ी ही क्यूट सी स्टोरी वायरल हो रही है और मुझे लगा कि मुझे मेरे लिसनर्स के साथ उसे जरूर शेयर करना चाहिए। सो बेसिकली ये स्टोरी है एक कैट की, जो कि बेसिकली एक पेट कैट है, मतलब वो किसी की पालतू बिल्ली है, लेकिन वो सबको अपनी बिल्डिंग में सबकी तरफ ऐसे देखती है कि उसको कभी खाने को नहीं मिला है, उसको खाने को नहीं देते हैं, तो जो भी लोग उसके पास से गुजरते हैं वो उसको खाना डालते हैं। जी हाँ, गेस व्हाट, वो ये काम कब से कर रही है? वो ये काम कर रही है 6 साल से, पिछले 6 साल से। अब उसका मालिक इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने अपने दरवाजे के बाहर एक नोट लिख दिया और साथ में बिल्ली की पिक्चर भी चिपका दी कि हुएवर इज फीडिंग दिस ग्रे कैट ऑन 3rd फ्लोर डोंट डू इट। ये पूरी तरह से खिलाई पिलाई हुई बिल्ली है, मतलब पूरी तरह से इसका पालन पोषण होता है, इसको बहुत अच्छे से खिलाया जाता है और इस वक्त ये एक प्रिस्क्रिप्शन डाइट पर है और इसको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खाना नहीं देना है, मतलब कोई भी और खाना इसे ना दे। ये ऐसे एक्टिंग करती है कि इसको कभी खाना नहीं मिला है और उसको कोई खाना नहीं देता है, बट ये एक्टिंग कर रही है और ये एक्टिंग ये पिछले 6 साल से कर रही है। सो इस एक्टिंग का शिकार ना होइएगा, इसको फीड नहीं करना है आपको, क्योंकि डॉक्टर ने इसको एक डाइट बोली है, पर्टिकुलर डाइट जो कि इसे फॉलो करनी है, और ये वो नहीं कर पा रही है क्योंकि अपेरेंटली कोई तो इस बिल्डिंग में इसे फीड कर रहा है और उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। सो मैं अब आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, और ये सारी की सारी चीज उसने हैंड रिटन नोट में लिखी हुई है जो कि उसने अपने दरवाजे के बाहर चिपकाया हुआ है अलॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ दैट ग्रे कैट, एंड लिखा हुआ है बड़े अच्छे से कि जो भी आप लोगों में से फीड कर रहा है इस ग्रे कैट को, मत करो, ये आपको बेवकूफ बना रही है कि मुझको खाना नहीं देते, मुझको खाना नहीं मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको अच्छे से खाना मिलता है और ये प्रिस्क्रिप्शन डाइट पर है जो कि इसे फॉलो करनी है। सो हुएवर इज फीडिंग दिस ग्रे कैट डोंट डू इट, दिस कैट नोज एक्टिंग एंड ही इज डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग, 6 साल से कर रही है ये एक्टिंग। जी हाँ, सो अगेन उसके बाद लोगों ने उसे फीड किया या नहीं किया वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्या बात है, मतलब जो कैट्स होती है ना वो इतनी ज्यादा शातिर होती है। सबसे पहले तो वो ये मानती है कि इंसान जो है वो उनके स्लेव्स हैं, मतलब उनके नौकर हैं और उन्हीं की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। जी हाँ, दे आर नॉट लाइक डॉग्स एंड दे आर वेरी वेरी वेरी कनिंग क्लेवर। जी हाँ, और दूसरी चीज ये कि वो एक्टिंग भी इतनी अच्छी करती है कि आप उनको ऑस्कर खुद ही दे दो। जी हाँ, आई मीन इमेजिन, लुक एट दिस एग्जाम्पल, ये ग्रे कैट कितने अच्छे से एक्ट कर रही है, बताओ। खाना खा के आती है घर पे और फिर लोगों के सामने ऐसे देखती है कि मुझे खाना नहीं मिला, प्लीज मुझे खाना दे दो। जी हाँ, आई मीन दैट्स अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से,

जी दोस्तों, इसी के साथ हम वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का। तो मतलब अब पुराने गाने प्ले होने वाले हैं मेरे दोस्तों। जल्दी से आ जाइए अपनी फरमाइश लेकर। अगर आपकी कोई फरमाइश है और आपकी फरमाइश में कोई पुराना गाना है जो कि आप करना चाहते हो फरमाइश, तो फिर तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज ये टाइम ही होता है ओल्ड इज गोल्ड का। मतलब पुराने गाने, पुराने किस्से, पुरानी बातें और वो प्यारे प्यारे खूबसूरत फसाने, उन सब चीजों के बारे में बात होती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की। इसकी धुन बहुत प्यारी है और इसके लिरिक्स भी बहुत प्यारे हैं, बट गायकी उफ मतलब लाजवाब। एंड दैट्स द रीजन बिकॉज ये गाना गाया है आशा जी ने। सुनते हैं इसको।

बातें और वो प्यारे प्यारे खूबसूरत फसाने, उन सब चीजों के बारे में बात होती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गाने की। इसकी धुन बहुत प्यारी है और उसके लिरिक्स भी बहुत प्यारे हैं, बट गायकी उफ मतलब लाजवाब। एंड दैट्स द रीजन बिकॉज ये गाना गाया है आशा जी ने। सुनते हैं इसको गाना।

जी हाँ दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो तो आशा जी का नाम बहुत ऊपर लिया जाएगा हमेशा। जी हाँ, इसी के साथ वैजयंती माला जी की बात करें तो एक कार्यक्रम के दौरान, एक इंटरव्यू के दौरान बेसिकली उनसे जब पूछा गया कि मैम आपकी फेवरेट मूवीज में से कौन सी जो है वो सबसे ऊपर आती है, तो उन्होंने संगम का नाम लिया। और जब उन्होंने यानी कि संगम के बारे में बात करनी शुरू की तो साथ में जो होस्ट थी, जो वहां पर उनका इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने भी संगम के बारे में उनसे कुछ चीजें पूछी। उन्होंने कहा कि मैम संगम के बारे में वो कौन सी चीजें थी जो आज भी आपको याद है। वो कहती हैं कि संगम जो है इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस हुई क्योंकि वो अच्छी तो थी ही, बहुत लंबी मूवी थी, लेकिन वो पहली मूवी थी जो टेक्निकलर्स में शूट हुई थी। जी हाँ, मतलब शूट जो है उसे किया गया, उसके बाद उसे प्रोसेस करने के लिए फॉरेन जाना पड़ा राज कपूर साहब को, क्योंकि अपेरेंटली उस वक्त टेक्निकलर की कोई भी लैब उसको प्रोसेस करने के लिए, उस फिल्म को प्रोसेस करने के लिए कोई भी लैब इंडिया में मौजूद नहीं थी। उन्हें फॉरेन जाना पड़ा, राज कपूर ने वो काम किया। और इनफैक्ट बहुत सारी शूटिंग जो है, ऐसा कहा जाता है, इस पिक्चर की जो है वो अब्रॉड में हुई, और राज कपूर ने उससे पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। मतलब इतनी ज्यादा शूटिंग वो भी अब्रॉड में, दैट वाज द फर्स्ट मूवी। जी हाँ, तीसरी चीज उन्होंने कहा कि उसमें जो मेरा रोल था वो सारे वाइट लोगों के साथ था, तो उन्होंने मुझे लुक भी वैसा ही दिया, लेकिन जो म्यूजिक है संगम का वो राज कपूर ने अपने हाथों से मोतियों की तरह चुन चुन कर इसमें डाला है। लेकिन ये मूवी जिसको बनाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत लगी, इतने ज्यादा पैसे लगे, आप खुद सोचिए कि उस वक्त जो है वो टेक्निकलर्स की मूवीज जो है वो नहीं हुआ करती थी। दिस वाज द वेरी फर्स्ट मूवी, और राज कपूर को लिटरली इसे प्रोसेस करने के लिए ही जाना पड़ा अब्रॉड। इमेजिन दैट। जी हाँ, आपने संगम देखी है या नहीं देखी है जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Subah se shaam tak.
3: When I will dance, my dance shall speak for me.
2: शाम से रात्रि तक
3: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग.
4: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा. लगा कैसा.
2: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान.
5: हिल मत चल.
4: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा. ओके
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. ब्रेज सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. ब्रेज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निबिया के साथ. दोस्तों, अगर आप लोग पुरानी पिक्चर्स नहीं देखते हो लेकिन आप पुरानी पिक्चर्स देखना शुरू करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगी गाइड मूवी का. जी हाँ, गाइड मूवी जो कि वहीदा रहमान और देवानंद साहब के करियर की सबसे बड़ी मूवी है. और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे आप हिंदी फिल्म जगत की भी सबसे बड़ी मूवीज की लिस्ट में शामिल कर सकते हो और वो बहुत टॉप पे आएगी. वो लिटरली एक ऐसी मूवी थी जिसने बहुत सारे रूढ़िवादी सोच को खत्म करने की कोशिश की, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को छेड़ने की कोशिश की जो उस वक्त बहुत ज्यादा आम नहीं था. जी हाँ, और इसी मूवी में एसडी बर्मन का म्यूजिक है, इसी मूवी में गाने हैं किशोर दा के साथ में रफी साहब के. ऐसा कहा जाता है कि एसडी बर्मन ने जब एक बहुत ही खूबसूरत गाना किशोर दा को गाने के लिए दिया, क्योंकि देवानंद साहब की मूवी थी और गाता रहे मेरा मन. जी हाँ, मैं नहीं गा रही हूँ, सो डोंट वरी. ये गाना जो है वो किशोर दा ने गाया और ये बहुत ही बड़ा हिट हुआ. लेकिन जब बहुत ही सैड गानों की बात आई और उन सैड गानों के साथ जस्टिस करने की बात आई, तो एसडी बर्मन को रफी साहब का ही ख्याल आया. उन्होंने उन गानों को किशोर दा को नहीं दिया गाने के लिए. जी हाँ, उन्होंने रफी साहब को बुलाया और वो दो गाने जो बहुत ही बड़े हिट हुए, दिन ढल जाए चाहे या ना रात ना आए, वो गाना और तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ये दोनों ही गाने गाइड मूवी के बहुत ही बड़े हिट हैं. ऑफकोर्स जो किशोर दा वाला गाना है वो भी बहुत बड़ा हिट है, बट इन गानों के साथ ना वो दर्द जो है वो आवाज में आना चाहिए था और उस आवाज के लिए रफी साहब का ही ख्याल एसडी बर्मन को आया. सचिन देवबर्मन को आया। उन्होंने रफी साहब के साथ ये दो गाने गिए। रिजल्ट ये हुआ कि मूवी बहुत ही बड़ी हिट हुई और इसका म्यूजिक भी एक नंबर का बनकर निकला। उसके बाद आया वक्त 70s का। 70s का वक्त आते आते किशोर दा जो है वो लगभग हर सिंगर की आवाज बन गए थे ऑलमोस्ट। मतलब ऐसा नहीं है रफी साहब तब काम नहीं कर रहे थे, रफी साहब तब भी काम कर रहे थे, पर तब तक जो है वो किशोर दा जो है वो काफी सिंगर्स काफी एक्टर्स की आवाज बन गए थे। और ऐसे में एसडी बर्मन को तब भी लगता था कि देवानंद साहब की आवाज की जब भी बात होती है या फिर देवानंद साहब की मूवीज की जब भी बात होती है तो उनकी स्टाइल की आवाज है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, उनके स्टाइल की आवाज है किशोरदा, लेकिन उनकी आत्मा की आवाज रफी साहब ही है। जी हाँ, ये कहना कि देवानंद साहब की आवाज सिर्फ रफी साहब थे या फिर किशोरदा थे ये गलत होगा। सचिन देव बर्मन यानी कि एसडी बर्मन, महान म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन ने ये साफ कहा है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस चीज की नब्ज पकड़ ली थी। उन्होंने कहा था कि देखो देवानंद साहब के दो मोड है। जी हाँ, एक जहां पर वो एकदम मस्ती में होते हैं, एकदम मस्ती में, जी हाँ, और दूसरा जब वो दर्द में होते हैं। वो जो दर्द वाली आवाज है या फिर जो दिल से निकली हुई आवाज है, वो जो आत्मा से निकली हुई आवाज है, वो सिर्फ रफी साहब कर सकते हैं। लेकिन जो उनका स्टाइल है वो किशोर दा से बहुत ज्यादा मैच होता है। उनके स्टाइल की आवाज कैन ओनली बी किशोर कुमार। एंड आई थिंक ये सेंस बनाता है। क्या खूबसूरत चीज होती थी ना, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर कितने मंझे हुए होते थे, कैसे पहचान लेते थे किसी चीज की नब्ज। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, क्योंकि घड़ी कह रही है कि निव्या शर्मा अब चलिए जाइए, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं हम सबको। ठीक है, चलिए ठीक है, मान जाते हैं, हम जा रहे हैं आज के लिए, वापस आएंगे कल। फ्राइडे का दिन होगा, मस्ती का दिन होगा, खुशी का दिन होगा। आई नो फ्राइडे मेक्स यू सो हैप्पी, नॉट जस्ट यू बट ऑल ऑफ अस, राइट। एंड इसी के साथ हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से, सजना है मुझे। जी हाँ।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ।

नौकायन यानी कि रोइंग प्रतियोगिता रॉकहैम्पटन की फिट जराय नदी में ही आयोजित की जाएंगी। कुछ लोगों द्वारा मगरमच्छों के खतरे और नदी के तेज बहाव को लेकर जताई गई चिंताओं को खारिज करते हुए आयोजकों ने कहा कि सुरक्षा और व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम रहेंगे। वहीं ट्रैफिक टाइम में 15% की कमी की उम्मीद। ब्रिस्बेन काउंसिल के मुताबिक स्मार्ट ट्रैफिक टेक्नोलॉजी का मकसद शहर में गाड़ियों के रुकने के समय को कम करना है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस सिस्टम से लोगों के सफर का समय 15% तक घटेगा और गाड़ियों के आपस में टकराने के मामलों में भी 12% की कमी आएगी। वहीं शहर में प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा के कड़े नियम। स्मार्ट कैमरों को लेकर ब्रिस्बेन काउंसिल ने नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि ट्रैफिक कैमरों द्वारा कलेक्ट किया गया डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। वहीं लोकल स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिसाब से बदलेगा ट्रैफिक। जी हां, ये नया एआई सिस्टम ब्रिस्बेन के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स जैसे फुटबॉल मैच और वीकेंड की भीड़ को देखते हुए खुद ब खुद सिग्नलों की टाइमिंग एडजस्ट करेगा। इसके साथ ब्रिस्बेन बस और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार। स्मार्ट सिग्नल के साथ साथ ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल सार्वजनिक बसों को भी सिग्नल पर प्राथमिकता देने की योजना बना रही है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली में ब्रिक्स समिट का धमाकेदार आगाज। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के शुरू होने की खबर है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। वहीं तमिलनाडु राजनीति में वॉर पलटवार। जी हां, तमिलनाडु की राजनीति से एक बड़ी हलचल आ रही है सामने। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अभिनेता से नेता बने विजय के विधानसभा में दिए बयानों पर तीखा पलटवार किया है। वहीं एप्पल इवेंट में चमका भारतीय ऐप। टेक और इंडिया लवर्स के लिए एक अच्छी खबर। एप्पल के हालिया ग्लोबल लॉन्च इवेंट में भारतीय न्यूज ऐप एनडीटीवी को खास तौर पर दिखाया गया। एप्पल के नए सिरी एआई असिस्टेंट के डेमो के दौरान यह इकलौता भारतीय न्यूज ऐप था जो स्क्रीन पर नजर आया। वहीं लद्दाख के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष अधिकार देने का प्रस्ताव रखा है। वहीं दिल्ली में अवैध इमारतों पर बड़ा एक्शन। हाल ही में सत्य निकेतन में हुई इमारत दुर्घटना के बाद दिल्ली नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन के इलाकों में कार्रवाई करते हुए करीब 58 खतरनाक और अवैध ढांचों को गिरा दिया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले एप्पल ने लॉन्च किया पहला फोल्डेबल आईफोन ड्यूओ। जी हां, इंटरनेशनल टेक वर्ल्ड से बड़ी खबर। एप्पल ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन ड्यूओ ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। वहीं वर्ल्ड आर्चरी को मिला $2 मिलियन का फंड। विश्व तीरंदाजी संघ को एस्टन फाउंडेशन की तरफ से $2 मिलियन की भारी ग्रांट मिली है। वहीं चीन में भूस्खलन से भारी तबाही। एशिया से एक दुखद खबर आ रही है। चीन के कई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन और कीचड़ के बहाव के कारण कम से कम 16 लोगों की जान चली गई है। वहीं बैंक ऑफ जापान बढ़ाएगा ब्याज दरें। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो बैंक ऑफ जापान ने संकेत दिए हैं कि देश में बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में आगे भी बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं लातविया में रिकॉर्ड क्रूज सीजन का समापन। यूरोप के लातविया देश के लिए ये टूरिज्म सीजन बेहद खास रहा। उनके ऐतिहासिक शहर लियेपाजा इस साल का रिकॉर्ड क्रूज शिप सीजन पूरा हुआ, जहां इस बार दुनिया भर से रिकॉर्ड संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचे। वहीं जर्मनी की एरोस्पेस कंपनी की बड़ी कामयाबी। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जर्मनी की निजी कंपनी इसा एरोस्पेस ने इतिहास रच दिया है। नॉर्वे से लॉन्च किए गए उनके स्पेक्ट्रम रॉकेट ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले पैरा आर्चरी सीरीज में भारत का शानदार प्रदर्शन।
वहीं 10 साल की

0: नायरा ने रचा इतिहास। भारतीय शूटिंग से एक कमाल की खबर सामने आई है। महज 10 साल की युवा शूटर नायरा शर्मा ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं चैंपियंस लीग में फुटबॉल का रोमांच। यूरोपीय फुटबॉल में बड़े मुकाबले देखने को मिले। पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी ने स्लोवन को करारी शिकस्त देकर अपने चैंपियंस लीग अभियान की जबरदस्त शुरुआत की है। इसी के साथ इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान बर्मिंघम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में तीसरा टेस्ट मैच चल रहा है। पाकिस्तान की पहली पारी महज 133 रनों पर सिमट गई। वहीं मेलबर्न में एनएफएल का ऐतिहासिक मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकन फुटबॉल एनएफएल का क्रेज देखने को मिल रहा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले ऐतिहासिक एनएफएल मैच के लिए 1,00,000 से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651। ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026 from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Taua Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701651।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: Academy presents a musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04227

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशन. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशन एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
1: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चल
1: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा या ओके
2: सॉफ्ट लाउड या
3: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना
4: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
3: ऐसा क्या खास है वहाँ
4: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
3: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ दोस्त।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: सियाराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 p.m. till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-111-27-035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-111-27-035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-111-27-035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

लखीमराय खड़किया पूर्णिया ते अरवल दे 84 ब्लाकां दियां 514 पंचायतां हड़ दी लपेट विच हन। उधर ईरान दे हवाबाजी उद्योग विरुद्ध हुण तक दियां सब तो व्यापक कारवाईयां विचों इक विच अमरीका ने ईरान दे हवाबाजी नेटवर्क हथियारां दे तबादले ते गैर कानूनी खरीद योजनावां दा समर्थन करन दे दोष विच 36 संस्थावां अते व्यक्तियां ते पाबंदियां लगाईयां हन। अमरीकी खजाना विभाग दे विदेशी संपत्तियां दे नियंत्रण दफ्तर ने कहा है कि इसने सारियां सरगर्म ईरानी एयरलाइना नाल ही विदेशी विचोलिया शैल कंपनियां होर फार्मा नूं निशाना बनाया है जो कथित तौर ते ईरान नूं जहाज दे पुरजे ते हवाबाजी नाल संबंधित टैक्नोलॉजी प्राप्त करन विच मदद कर रहियां हन। अमरीकी विदेश विभाग दे बुलारे ने कहा है कि अमरीका ईरान दे हवाबाजी खेतर दा समर्थन करन वाले वख-वख देशां विच 36 संस्थावां अते व्यक्तियां ते पाबंदियां लगा के ऑपरेशन इकोनॉमिक आउट कास्ट नूं लागू करना जारी रखदा है। उधर दक्षिणी एशियाई देश इंडोनेशिया तो एक वड्डी खबर सामने आई जिथे मशहूर ज्वालामुखी अकान क्राकाटाओ विच होए धमाके की रिपोर्टिंग ले जा रहे 5 फोटो पत्रकारा 2 क्रू मैंबरां ते एक गाइड सने 8 लोग लापता हो गए। इन्हां लोगों नूं लब्भण लई बचाव टीमां वलों तेजी नाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी अनुसार बैंटन प्रांत दे कारिता शहर तो रवाना हुई एक स्पीड बोट राही लोग सुमात्रा ते जावा विचाले सुंडा खाड़ी स्थित ज्वालामुखी टापू वल जा रहे सन। इस दौरान सोमवार शाम 6:13 तट तो लगभग 18.5 किलोमीटर दूर पहुंचने ते एक पत्रकार ने अपने परिवार नूं आखिरी मैसेज भेजा जिस तों बाद उस नाल संपर्क पूरी तरह दे नाल टुट गया ते हाले तक उन्हां दी कोई उगसुग नहीं लभ सकी। लापता हुए 5 पत्रकार इंडोनेशिया दे सरकारी एजेंसी अंतारा तुर्किया दे अनादोलू एजेंसी अते कई होर लोकल ते विदेशी मीडिया अदारियां विच काम करदे हन। इन्हां दे अचानक इस तरह गायब होण कारण तड़थली मच गई है ते इन्हां दी भाल लई सर्च ऑपरेशन तेज कर दिता गया है। बैंटन सर्च एंड अते रेस्क्यू ऑफिस दी दे चीफ ऑफ अमृत अनुसार मंगलवार तो तैनात बचा टीमा हाले तक लापता हुए इस ग्रुप दे लोकेशन ट्रेस करन विच कामयाब नहीं हो सकियां हन अते उन्हां नूं लब्भण दीआं कोशिशां लगातार जारी हन। हुण तक दे अहम खबरां विच बस इन्ना ही। खबरां दी वधेरे जानकारी ते सुझाव देण दे लई तुसीं साडे नाल जुड़ सकते हो, संपर्क कर सकते हो, तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो। साडी ईमेल आईडी briswani@briswani.com। इस दे नाल ही तुसीं साडे नाल साडे फेसबुक पेज दे जरिए भी जुड़ सकते हो। साडा फेसबुक पेज है रेडी briswani 1701। फिर हाजिर होवांगे ताज़ा तरीन खबरां लैके। तकली दी इजाजत, सत श्री अकाल।

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश अलग दिन से बने हुए हो। अगली जिहड़ी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान की। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी, यह कहा जाता है ते कहा जाता है कि कहानी कितने ना कितने उसकी है। मनिया जाता है कि यह कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाने वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। यह गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नूं बयां करता है। इस औरत नूं तवायफ कहिंदे हैगे लोग, सानूं नहीं पता, कहिंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहिंदियां ने। कई रिपोर्ट्स मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी, जो बनारस दी दाल मंडी विच रहिंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्निया जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलों गुजरदे समय ना, जदों लंघदे समय ना, उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्हां नूं मिलिया सीगा। उत्थों ही तां कहानी शुरू हुई सी। दसदी हां उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच, पर पहला सुनो एक गीत।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली हैगा जेड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार दे कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरुषां दे पलायन दा भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नूं अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101.1 ते जी अच्छे संदेश अलग दिराल से बने हुए हो। हुण देखो कचौड़ी गली बारे में तो उन्होंने इन्ना कुछ दसता हैगा है तुसी देखियो जरूर एक बारी गीत ते तुसी जेड़े घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्होंने कुछ पता होवे या फिर

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की इंट्रीकेसीज को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना। ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachcho ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488-623-459 ya Birendra Singh on 0409-390-583 ya fir Baba on 0413-701-651.

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ना बदला मैं, ना बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीन प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
2: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
1: ऐसा क्या खास है वहाँ
2: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
1: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अ टन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Digicel, better together.
3: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

के लिए। भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 पीएम टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिंबा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं
2: तो उमसॉक से बात कर इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा
2: बिल्कुल खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801
3: प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई
4: ओमसॉक केयरिंग विद डिग्निटी

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और टाउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: Sargun Music Academy presents a musical tribute to celebrate the timeless classics of Mahmood Rafi and Asha Bhosle on the 12th of September at the Lighthouse Community Center, Forest Lake, from 5 p.m. onwards. For tickets, contact 04

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर, याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा या
3: या
2: ओके सॉफ्ट
3: या सॉफ्ट
2: या
3: अब लाउड या
4: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
5: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
4: ऐसा क्या खास है वहाँ
5: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
4: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: आप लोग सुन रहे

गुरु पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। गुरु पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाये रहते हैं। उनकी वाणी रसपान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं। उनकी वाणी रसपान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। श्रोताओं, जीवन आधार की नैया में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। जीवन आधार हमारी वो प्रस्तुति जिसके साथ हम करते हैं अपनी और आपकी सुबह की एक खास शुरुआत। आज भी स्मरण करेंगे उस परम शक्ति का, उस खुदा का, उस ईश्वर का, उस वाहेगुरु का, उस जीजस का, जिसने हमें जीवन का सही संदेश दिया है, जीवन की सही शिक्षा हम तक पहुंचाई है और जिसके लिए हमारी सारी प्रार्थनाएं हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में इस एक अगले गीत के साथ। सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 AM।

जीवन की घड़ियां थोड़ी हैं, दुनिया की मंजिल लंबी है। जीवन की घड़ियां थोड़ी हैं, दुनिया की मंजिल लंबी है। छोड़ी गुरु पे जिम्मेदारी वो पार लगाए रहते हैं, छोड़ी गुरु पे जिम्मेदारी वो पार लगाए रहते हैं। रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं जीवन आधार सताक्षी के साथ। और गुरु की महिमा का मंडन हर धर्म में किया गया है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु ही है जो आपको जीवन का सही संदेश देता है, आपको ईश्वर से मिलाता है, उस सर्वशक्तिमान से मिलाता है, आपको आपके कर्मों की ओर लेकर जाता है और जीवन का सही पाठ पढ़ाता है। शायद इसीलिए भगवान ने भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी भगवान श्री कृष्ण ने, गोविंद ने भी गुरु को खुद से ऊपर स्थान दिया है। आइए गुरु को नमन करते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन आधार का आनंद ले रहे हैं आप रेडियो प्रस्थानी पर और अपनी सुबह को खास बना रहे हैं। दोस्तों, जब भक्ति कानों में पड़ती है, जब आपकी शुरुआत उसके साथ होती है जिसे आप मानते हैं, तो यकीन मानिए जीवन सरल हो जाता है, सार्थक हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। इसी मन को आनंद से भरेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। रेडियो प्रसानी 1701 AM पर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। आज जिस दौर में हम और आप आ गए हैं, रिश्तों की मर्यादा भूल रहे हैं, रिश्तों की वैल्यू कहीं खो रही है। हम अक्सर अपनी जबान पर कंट्रोल ना करते हुए न जाने कितना कुछ कह देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, अगर बाद में आपको पछतावा भी होता है तो भी आप अपनी कही गई बातें वापस नहीं ले सकते। और रिश्ते एक गांठ से बंध जाते हैं, जिसे चाह कर भी आप कितना भी पछताएं, लेकिन उस गांठ के बिना उस रिश्ते को नहीं चला सकते हैं। इसी बात पर जीवन आधार में बढ़ेंगे आगे। आइए सुनते हैं ये अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी सताक्षी के साथ।

जीवन को आधार से जोड़ता हमारा और आपका सफर जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी 107.1 AM पर। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गाने के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी।

दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार। हम सब चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म में विश्वास करें, लेकिन ईश्वर का नाम हम सब तभी लेते हैं जब हम पर कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है या कोई कष्ट हमारी जिंदगी में आता है। बिना कष्ट के ईश्वर को याद करने का समय हम में से किसी के पास नहीं है। आज कल परसों कर लेंगे पूजा या कर लेंगे आराधना, यही कहते हैं हम। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप दुख में ईश्वर को याद करते हैं तो दुख आने का इंतजार ही क्यों करना। अगर अच्छे दिनों में भी ईश्वर को याद किया जाए तो शायद वो दुख आपके जीवन में आएगा ही नहीं। इसलिए प्रार्थना करते रहिए, उस परमपिता से जुड़ते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

रेडियो प्रस्वानी 107.01 AM पर आप सुन रहे हैं जीवन का आधार जीवन आधार। जी हाँ, जीवन के पन्नों को हम एक आधार दे रहे हैं, अपनी और आपके जीवन को एक नया अर्थ दे रहे हैं कुछ खास बातों और यहाँ पर हमारे पेश होने वाले कुछ खास गीतों के साथ। एक और ऐसे ही गीत के साथ बढ़ेंगे आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अक्सर जब भी आपको सफलता मिलती है तो एक घमंड, एक ईगो, एक अहम आप में घर कर ही जाता है, लेकिन ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, उल्टा अपने अहम को इतना ऊंचा कर देते हैं कि लोगों को आपसे भय हो जाता है, आपसे डर हो जाता है। याद रखिए, वही इंसान सही है, अच्छा है और संतुष्ट है जो अपना जुड़ाव आसमान पर पहुँच कर भी जमीन से रखे। इसी बात पर आगे बढ़ेंगे जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और फिर से हमारा जीवन के जुड़ाव से जुड़ा सफर जीवन आधार। कल फिर से सुबह की शुरुआत हम इसी सफर के साथ करेंगे, और जब तक हम और आप कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और उस शक्ति को, उस परम पिता को, उस खुदा को याद करते रहिए, उससे जुड़ते रहिए। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट Saturday, September 12, 2026, from 5:30 PM till late night at Sanatan Cultural Center, 550 Wembley Road, Berrimba, Queensland 4117. Amit Kumar, Baba Siga Star, Salim Prasad, Pinky of Gold Town aur Tauwa Star ki surili awazon mein kirtan ka anand le. Entry price sirf $30 per person, jisme dinner included hai. 10 years se chote bachchon ke liye entry free. Is grand kirtan night ki sari proceeds jayengi Sanatan Cultural Center ko. Zyada jankari ke liye contact Salim Singh on 0488623459 ya Birendra Singh on 0409390583 ya fir Baba on 0413701651.
1: हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन क्षमा चाहती हूँ, कल मेरा प्रोग्राम जो है नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है और हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी भी गला ख़राब है, लेकिन कोशिश है कि आप सभी के बीच अपडेट्स लेकर आती रहूं। आज वीकेंड का एक दिन थोड़ा सा दूर है, यानी कि वीकेंड बस थोड़ी सी दूरी पर है दोस्तों। आज है फ्राइडे। अगर आप अभी भी बेड से उठकर कॉफी बनाने के लिए उतर गए हैं ना, तो एक कप अपनी दोस्त चांदनी जैन के लिए भी जरूर बनाइएगा, है ना। मैं भी चाहती हूँ आपके हाथ की कॉफी पीना, भाई क्या पता मेरा गला ठीक हो जाए। चलिए जी, बहुत प्यारी प्यारी बातें हो गई है, हम शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते हैं रेडियो प्रेस वाणी में ये प्रोग्राम, यानी कि जाने का सफर जारी रखेंगे और सुनेंगे आगे आगे बहुत सारी अपडेट्स ओनली ऑन रेडियो प्रेस वाणी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे दोस्तों हम हमेशा कुछ ना कुछ रूल्स की बात करते हैं और उस रूल्स को बहुत ही सिंपल रखते हैं। यानी आज फ्राइडे है तो अगर फ्राइडे की किसी को भी थोड़ी सी भी टेंशन है ना, उस टेंशन को जरूर साइड में रखिएगा, म्यूजिक को थोड़ा सा लाउड करिएगा और स्माइल को तो भाई वाइड जरूर रखना है, बिकॉज समटाइम्स ना ह्यूमन लाइफ चेंज करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप नहीं चाहिए होता है। कभी कभी बस एक अच्छी सी मॉर्निंग, एक कप चाय या कॉफी और एक पॉजिटिव थॉट की जरूरत होती है और यही बहुत काफी होता है। सो ब्रिस्बेन, आर यू रेडी फॉर दिस शो? जी हाँ, तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और गीत सुनाई देते हैं, उसके बाद जानेंगे ब्रिस्बेन के वेदर अपडेट, उसके बाद बहुत सारी बातें, न्यूज, सारा कुछ लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन के वेदर की। फ्राइडे यानी कि आज ब्रिस्बेन में वेदर थोड़ा सा मिक्स्ड रहने वाला है। मॉर्निंग में शावर्स का चांस है और टेम्परेचर रफली 12 टू 13 डिग्री के आसपास से स्टार्ट होगा, वाइल डे टाइम मैक्सिमम अराउंड 23 डिग्री तक जा सकता है। तो जो लोग अर्ली मॉर्निंग कम्यूट कर रहे हैं भाई, अम्ब्रेला या फिर लाइट रेन जैकेट हैंडी रखना। और एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, यूवी लेवल फ्राइडे को भी वेरी हाई तक पहुंच सकता है यानी आज, इसीलिए लेटर इन द डे बाहर निकल रहे हैं ना तो सनस्क्रीन जरूर लगाइएगा। वेदर का सिंपल सा फंडा है दोस्तों, ब्रिस्बेन की मॉर्निंग अगर क्लाउडी हो भी तो भी ना मूड क्लाउडी नहीं होना चाहिए, है ना, मूड के बादल फैले नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में। सो दोस्तों, अब टाइम है ब्रिस्बेन के इम्पोर्टेंट लोकल अपडेट्स का और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। दोस्तों, ब्रिस्बेन में AI पावर ट्रैफिक लाइट्स का ट्रायल प्लान किया जा रहा है। ट्रायल में लोगांट रोड और केल्विन ग्रोव रोड के मल्टीपल इंटरसेक्शंस इंक्लूड होंगे। सिस्टम ट्रैफिक को रियल टाइम में एनालाइज करके ट्रैफिक लाइट्स की टाइमिंग को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब गोल क्या है? लेस वेटिंग, शॉर्टर क्यूज और स्मूदर ट्रैफिक। जी हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि AI ट्रैफिक मैनेज करेगा लेकिन ह्यूमन ओवरसाइट भी सिस्टम में रहेगा। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा दोस्तों, तो फ्यूचर में ना ब्रिस्बेन के और इंटरसेक्शंस पर भी ऐसी ही टेक्नोलॉजीज जो है वो आ सकती है। तो शायद फ्यूचर में हम ट्रैफिक लाइट को ये कहते हुए सुनेंगे कि डोंट वरी मेट, AI इज हैंडलिंग इट। तो चलिए, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं। हम हैंडल करते हैं इस गीत को ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ब्रिस्बेन सेफ्टी कम्युनिटी की। ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड में रीसेंट डेज में फायर कंडीशंस भी कंसर्न का रीजन बनी हुई है। क्वींसलैंड फायर डिपार्टमेंट ने रीसेंट वीकेंड में 180 से ज्यादा फायर्स अटेंड किए थे और अथॉरिटीज ने वार्न किया है कि भाई ड्राई कंडीशंस के चलते फायर डेंजर को सीरियसली लेना जरूरी है। इसीलिए अगर आप रीजनल या फिर बुश फायर प्रोन एरिया में हैं तो ऑफिशियली अलर्ट्स को फॉलो करिए, कंडीशंस को इग्नोर मत करिए और इमरजेंसी के वक्त अथॉरिटीज की एडवाइस फॉलो जरूर करिए। सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो अब चलते हैं नेशनल अपडेट्स की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में नेचुरल गैस पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट ने प्रपोज रिजर्वेशन रूल्स में चेंजेस किए हैं। न्यू अप्रोच में ऑस्ट्रेलियन एनर्जी रेगुलेटर मार्केट कंडीशंस को देखकर डिसाइड करेगा कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए कितनी गैस अवेलेबल होनी चाहिए। पॉलिसी का एम है डोमेस्टिक गैस सप्लाई को स्टेबल रखना और ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर्स के लिए एनर्जी अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करना। इम्प्लीमेंटेशन का प्रपोज टाइमिंग 2028 से है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानेंगे थोड़ी ही देर बाद इंडिया के बारे में भी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

वेलकम बैक टू रेडियो बिस्वानी में। तो आइए अब थोड़ा सा इंडिया को कनेक्ट करते हैं। इंडिया कनेक्शन की बात करें तो इंडिया इस वीकेंड एक मेजर इंटरनेशनल इवेंट होस्ट कर रहा है, ब्रिक्स लीडर्स समिट। और समिट जो है 12 और 13 सितंबर को न्यू दिल्ली में होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद और साथ ही चाइनीज प्रेसिडेंट एक्सी जिनपिंग जैसे लीडर्स के साथ एक्सपेक्टेड है। एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एजेंडा पर है। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन में रहने वाले हमारे इंडियन लिसनर्स के लिए है ये, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया में कितनी भी दूर क्यों ना हो, इंडिया की खबर सुनते ही कनेक्शन ऑटोमेटिकली फील होता है, राइट? तो भाई इंडिया की न्यूज़ भी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। थोड़ी देर बाद बात करेंगे एंटरटेनमेंट गॉसिप, आगे क्या कुछ है भाई फिल्म में तड़के के बारे में जानेंगे। तड़का लगना बहुत ज़रूरी है ना, बिना तड़के का मज़ा नहीं आता। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

ओके ब्रिस्बेन सीरियस न्यूज के बाद अब थोड़ा सा वही फिल्मी तड़का, जैसे मैंने आप सभी से कहा कि फिल्मी तड़का बनता ही है। ऑस्ट्रेलियन पॉप आइकन काइली इज ये जो है भाई AFL ग्रैंड फाइनल के प्री गेम एंटरटेनमेंट को हेडलाइन करने वाली है भाई, है ना। AFL ग्रैंड फाइनल जो है वो 26 सितंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में होगा और काइली के लिए भाई ये स्पेशल है बिकॉज शी इज कमिंग बैक टू परफॉर्म इन हर होम टाउन मेलबर्न। जी हाँ, 20 मिनट्स प्रोडक्शन को रिपोर्टेडली ह्यूज स्केल पर जो है प्रिपेयर किया जा रहा है विद डांसर्स, विजुअल्स और बिग स्टेजिंग। सो काइली फैंस भाई गेट रेडी फॉर सम काइली मैजिक। तो भाई काइली मैजिक तो देखना बनता ही है, आखिर वो आ रही हैं 26 सितंबर को भाई मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, तो मिस मत कीजिएगा, एंजॉय जरूर कीजिएगा। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में आप सभी का। देखिए दोस्तों, एक घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर फ्राइडे मॉर्निंग विद मी, यानी कि आज चानी जैन ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी। आप जा रहे हैं वर्क पर, स्कूल ड्रॉप करने, बिजनेस ओपन करने, या फिर सिंपली अपना मॉर्निंग एंजॉय करने, एंड आई होप टुडे ब्रिंग्स यू समथिंग ब्यूटीफुल। सो दोस्तों, फ्राइडे है, स्माइल फ्री है, तो स्माइल करने में कंजूसी मत करिएगा। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन, और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी। ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग एंड हैव अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्राइडे ब्रिस्बन। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते सेम फ्रिक्वेंसी सेम पॉजिटिव वाइब्स के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी, और मेरी आवाज़ के लिए आज भी क्षमा मांगती हूँ। टेक केयर।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूएस की कार्यवाही पर भड़का ईरान, फारस की खाड़ी में 2 अमेरिकी जहाजों और 8 टैंकरों पर किया हमला। मिडल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। यूएस सेंट्रल कमांड की ओर से ईरान के 5 तेल टैंकरों को तबाह किए जाने के बाद तेहरान ने भी पलटवार किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC नेवी ने फारस की खाड़ी में 10 जहाजों और होर्मुज स्ट्रेट के पास 10 अन्य जहाजों पर हमला किया। ब्रिटेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल होने से 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट्स पर फंसे हजारों यात्री। यूके के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में अचानक आई बड़ी तकनीकी खराबी के कारण विमान सेवाओं पर भारी असर पड़ा है। फ्लाइट मॉनिटरिंग वेबसाइट और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गड़बड़ी की वजह से लगभग 1000 उड़ानें पूरी तरह रद्द करनी पड़ी है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने खार्ग द्वीप के पास मिसाइल हमले में उड़ाए ईरान के 5 तेल टैंकर, IRGC ने दी पलटवार की धमकी। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध अभी भी जारी है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में खार्ग के पास ईरान के कई तेल टैंकरों पर हमला किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने 8 सितंबर को ईरान के कच्चे तेल ले जाने वाले जहाजों के नष्ट करने का सैटेलाइट वीडियो भी जारी किया। अमेरिकी वॉरशिप पर हमला होने के बाद अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया। दुनिया के सबसे अमीर प्रधानमंत्री को मिला 64% का सैलरी हाइक, 26 करोड़ रुपए से भी अधिक हुआ वेतन। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने संसद को बताया कि राजनीतिक नेताओं की सैलरी बढ़ाई जाएगी। इससे मंत्रियों की सैलरी में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। सिंगापुर ने राजनीतिक नेताओं के भारी भरकम वेतन को सही ठहराया है, तर्क दिया है कि इससे काबिल लोग आकर्षित होंगे और अच्छा शासन सुनिश्चित होगा। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। हाइड्रल सुरंगों में फंसे 121 कर्मियों की जिंदगी बचाने को लेकर प्रयास जारी, पाइप से पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन। नेपाल में भयावह बाढ़ के 14 दिन बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। अब बचाव दलों का सबसे बड़ा ध्यान 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे दर्जनों कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालने पर है। अधिकारियों के मुताबिक इन भूमिगत सुरंगों में करीब 121 कर्मियों के फंसे होने का अनुमान है। सुरंगों में पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। क्रिमिनल का 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी भारत से शेयर करने को लेकर बड़ा खुलासा। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। इससे पहले क्रिमिनल ने कहा कि भारत को स्ट्रीट फाइटर जेट बेचना पुतिन के एजेंडे में सबसे ऊपर है और मास्को SU-57 टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने की संभावना पर नई दिल्ली के साथ बातचीत कर रहा है। मास्को से वर्चुअल ब्रीफिंग के जरिए भारतीय मीडिया से बात करते हुए क्रिमिनल के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, SU-57 जेट बहुत एडवांस्ड मशीनें हैं और ये दुनिया की बेहतरीन मशीनों में से एक है। इन मशीनों को बेचना एजेंडे में शामिल है। हर देश अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन भारत के साथ हमारे गहरे रणनीतिक संबंध हैं, इसलिए हम इस संभावना पर चर्चा करेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी भारत को दी जा सकती है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर 550 वेम्बली रोड बेरिम्बा क्वींसलैंड 4117 अमित कुमार बाबा सीगा स्टार सलीम प्रसाद पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन जिसमें डिनर इंक्लूडेड है 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651

हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नीलम का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। 5 मिनट हो गया है 7 बजकर और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं सुबह का सफर में। अभी से लेकर 9 बजे तक हमारा ये खूबसूरत साथ रहेगा। तो दोस्तों बताइए क्या हाल है। आज है 11th September 2026 की सुबह एंड आज फ्राइडे है। विश करना चाहेंगे अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका।

0: दोस्तों आशा है कि आप आज अच्छे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, रेडी फॉर द डे, रेडी टू रॉक एंड रोल. हैप्पी हैप्पी थॉट्स रखे हुए हैं, आप रास्ते पर निकल गए हैं, हौले हौले सफर कीजिएगा अपनी मंजिल की ओर. साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. चलिए सुबह का आगाज करते हैं.
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

तो बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे। चलिए देखते हैं फोरकास्ट में क्या बताया गया है आज ब्रिस्बेन के लिए। 14 डिग्रीज है, मोस्टली सनी डे रहेगा। टॉप्स बताया गया है आज के लिए 22 डिग्रीज और आज विंड गस्ट बताया गया है 23 किलोमीटर एन आवर। आज 95% चांस ऑफ रेन बताया गया है। सैटरडे को 90% चांस रेन बताया गया है और संडे को 40% चांस रेन बताया गया है। और चलिए देखते हैं मेलबर्न 7 डिग्रीज, मोस्टली सनी डे रहेगा। टॉप्स रहेंगे 17 और विंड गस्ट रहेगा 7 किलोमीटर एन आवर। कैनबरा 4 डिग्रीज, सनी डे, टॉप्स रहेंगे 19। सिडनी रहेगा, सिडनी है 10 डिग्रीज, टॉप्स रहेंगे 20, विंड गस्ट 16 बताया गया है।

गोल्ड कोस्ट 16 डिग्रीज अभी है, 21 टॉप्स रहेंगे और विंड गस्ट बताया गया है 33 किलोमीटर एन आवर. बारिश ओवर द वीकेंड एंड टुडे. और सनशाइन कोस्ट के लिए 16 डिग्रीज अभी है, टॉप्स रहेंगे 20. और ओवर द वीकेंड 85% चांस ऑफ रेन ऑन सैटरडे. संडे को 75% चांस रेन बताया गया है सनशाइन कोस्ट के लिए. और ऐसा अनप्रेडिक्टेबल फॉर द पास्ट वीक, पास्ट लास्ट वीक वॉज हॉट, गर्मी थी, एंड देन दिस वीक अब थोड़ा कूल हो रहा है. तो इस टाइम पर जो कॉफ एंड थिंग्स ये आपको यू नो कैच कर सकता है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिएगा. और जो कि स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है तो ढेर सारे ब्लूम्स लग रहे हैं. और अगर आप एस्थमेटिक है तो आपको टेंशन हो सकती है, अपना ख्याल रखें. अपना जो वेंटिलिन है, इनहेलर्स है आपके पास रहे, एंटीहिस्टामिन जो एलर्जी टैबलेट्स है वो भी अपने पास रखें. एंड ऐसा ना हो कि आप कहीं जाते हैं पार्क में या आप इरिटेटेड हो जाते हैं आपका ब्रीदिंग एंड स्टफ, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. तो अपना आप जानते हैं आपको क्या ट्रिगर करता है, उसके लिए आप तैयार रहे तो बेहतर रहेगा. और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. और बहुत ही खूबसूरत से गीत लाए हैं हम आपके लिए. इट्स 7:14 हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं. आप सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी, आपकी अपनी पहचान. सुबह का सफर में शामिल है, मैं हूं आपके साथ ही नीलम. ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा.

तो आगे बढ़ते हैं और ट्रैफिक अपडेट हमारे पास एक है गिम्पी अटेरो रोड या बॉल्ड हिल्स, यहाँ पर स्टेशनरी व्हीकल हैज आर है नो ब्लॉकेज दो नॉर्थ बाउंड टुवर्ड्स सनशाइन कोस्ट और यप दैट्स अबाउट ऑल। और जैसे ही हमारे पास कुछ अपडेट आता है तो हम आपको बताते चलेंगे दोस्तों, और रास्ते पर है ना, बेहद ख्याल रखेगा।

दिस इज सुपर का सफर में आप शामिल है 32 आफ्टर 7 और आज अपना जन्मदिन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो विश करना चाहेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू और आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। एनिवर्सरीज है या कहीं स्पेशल ओकेजन आज आप अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड बेस्ट विशेज देना चाहेंगे आपको। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में।

तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे, और एक मैसेज है आपको देते चलेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे ब्रेकफास्ट टेबल पे आज क्या है, और उसमें एक रेसिपी भी है। अगर आपको इसमें दिलचस्पी हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैसेज ये है, जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते चले जाते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा याद रखें, एंड आई डोंट थिंक सो इसको ढेर एलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, कि जहाँ से जहाँ अहंकार रहते हैं वहाँ पर जो रिश्ते हैं वो नहीं पलते। तो सोचिएगा इसके बारे में, काफ़ी डेलिकेट है। एंजॉय करते हैं ये गीत।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: This is 7:44 और सुबह का सफर में आप शामिल हैं और चलिए देखते हैं कि हमारे ब्रेकफास्ट टेबल पे आज क्या है और इस टाइम पर हम लाए हैं एक रेसिपी. दोस्तों ओट्स तो सभी को पसंद है और आप पोरिज बनाते हो, कभी कभी ओट्स का चिल्ला बना लेते हो, रोटी तावे पर आप बना सकते हो एंड लेकिन यहाँ पर हम लाए हैं ओट्स ग्रनोला. तो आपने देखा होगा कि सीरियल वाले सेक्शन में जो ग्रनोला है इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव और आप घर पर जब बना सकते हो तो खरीदने की जरूरत ही नहीं. तो हमारे पास बड़ी सिंपल वाली रेसिपी है और इसमें ऐसे जाता है 6 कप्स अगर आप लेते हैं तो ये हम बनाते हैं ताकि हम कीप कर सके एटलीस्ट 5 डेज तक के लिए. एंड आप ओवर दैट 5 डेज आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं एंड इसको कंज्यूम कर सकते हैं. सो 6 कप्स रोल्ड ओट्स लेंगे. तो ये जो इंस्टेंट वाला जो है उसमें छोटे छोटे जो ओट्स के जो दाने हैं वो है, लेकिन यहाँ पर जो नेचुरल वाला है वो ले. तो आप देख लेंगे कि जो पोरिज आप लेने जाते हैं ओट्स, तो एक बड़ा वाला है जो नेचुरल है और एक जो इजी वाला इंस्टेंट वाला है. तो इंस्टेंट वाला नहीं लेना है आपको, जो बड़ा वाला है वो लेना है. और इसमें डालना है 1/2 कप चॉप पीकन और 1/2 कप लेते हैं इसमें वॉलनट और 1/4 कप लेते हैं चिया सीड्स और 1/4 कप लेते हैं पम्पकिन सीड्स और इसमें लेते हैं 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट और छोड़ेंगे इसमें थोड़ा स्पाइसेस. सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून लेते हैं और लेते हैं 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट छोड़ देते हैं और फिर इसमें डालते हैं 1/2 कप कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो भी डालेंगे और 1/4 कप मेपल सिरप. अच्छी तरह से इसको मिलाकर आप ट्रे पर थिनली आप उसको क्या करेंगे, आप बेक अपने ओवन को वार्म अप करेंगे तो 135 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 275 फेरनहाइट हो. तो आप बेकिंग पेपर रखें और उसके ऊपर थिनली इसको स्प्रेड कर दें, ये जो मिक्सचर आपने बनाया है रोल ओट्स का विद ऑल द नट्स एंड ऑल द गुडीज, और इसको 50 मिनट्स तक आप बेक करें. तो निकालने के बाद अच्छी तरह से आप इसको क्रम्बल कर ले अच्छी तरह से, ये बहुत क्रम्बली टेक्सचर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है. इसको मैंने बनाया है एंड देन कूल होने के बाद इसको आप एक एयर टाइट कंटेनर में धर सकते हैं और फिर एवरी मॉर्निंग अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसको क्या कहते हैं कि हैवी ब्रेकफास्ट नहीं अच्छा लगता है और ऑन द गो आप पसंद करते हैं तो आप अपने कंटेनर में भी लेकर वर्क पर ले जा सकते हैं, वहां पर खा सकते हैं. अपने फेवरेट वाले मिल्क यूज कर सकते हैं, इट कैन बी स्किम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क और लैक्टोज फ्री मिल्क और आमंड मिल्क, जो भी आपको पसंद हो. इतने सारे वैरायटी है आप पता नहीं चलता कि कौन सा चूज करें, लेकिन सो जो भी मिल्क आपका फेवरेट है आप ऐसे उसको अपने जो ग्रेनोला है इसको मिक्स करें और एन्जॉय करें. और ये रहा हमारे ब्रेकफास्ट टेबल पे सम न्यूट्रिशियस स्टफ. और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजानी आपकी अपनी पहचान. आगे बढ़ते हैं, एन्जॉय करते हैं ये गीत.

तो बहुत ही खूबसूरत से गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं सुबह का सफर में। वैसे मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो वहां पर रिवर्स वॉकिंग के बारे में बताया गया। तो कहते हैं कि रिवर्स वॉकिंग करने से क्या होता है, आपका जो एज है वो बेसिकली इट्स एंटी एजिंग थिंग। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट तो मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ये क्या है। ऑब्वियसली एंटी क्या कहते हैं बैकवर्ड वॉकिंग या रिवर्स वॉकिंग, तो आप जानते हैं कि पीछे की तरफ चलना। और कहते हैं कि एक मिनट चलने से क्या कुछ जो चेंजेस है वो होती है। एक दफा में चलने से कुछ नहीं होगा, जैसे कि हफ्ते में 3-4 बार अगर आप वॉक करते हैं, रिवर्स वॉकिंग करते हैं। और 19th century में क्या है कि एक ऐसे काफ़ी सेंट्रिक माना गया था, लेकिन कभी कभी यू नो बैट लगाते थे वॉक करने के लिए। लेकिन एक्चुअली इसके बेनिफिट्स अभी हाल ही में यू नो दे हैव सॉर्ट ऑफ फाउंड आउट कि ये क्या क्या क्या क्या खूबियाँ लाता है हमारे लिए। तो कहते हैं कि वॉकिंग बैकवर्ड्स फॉर जस्ट 1 मिनट क्या करता है, एंगेज करता है डिफरेंट मसल ग्रुप्स, रिड्यूसेस नी जॉइंट स्ट्रेस एंड एक्टिवेट्स द ब्रेन थ्रू अनएक्सपेक्टेड कोऑर्डिनेशन। एक्चुअली ये बैक पेन के लिए भी अच्छा है क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं। तो फिजिकल मेंटल इफेक्ट्स किस तरह से आपको आपके बॉडी में परिवर्तन लाता है वो इस तरह से है। मसल जो है वो एक्टिवेट होता है, आपका जो क्वाड्रिसेप्स है, आपके जो काव्स है, शिन है, ये वर्क करता है इन रिवर्स। सो टारगेट करता है अनयूटिलाइज्ड लेग मसल्स, जो मसल्स आप बहुत यूज नहीं करते हैं वो इस टाइम पर यूज होता है। और जॉइंट रिलीफ होता है और फ्रॉम हील टू टो एंड टो टू हील विच इमीडिएटली लोअर्स द प्रेशर ऑन योर नी जॉइंट। तो पीछे की तरफ चलने से ये जॉइंट रिलीफ होता है। ब्रेन स्टिमुलेशन होता है क्योंकि आप अपने बैलेंस को कंट्रोल करते हैं पीछे की तरफ चल रहे हैं और अपना जो कॉग्निटिव है, फोकस है, ये बूस्ट होता है। और आपके जो हार्ट रेट है वो भी थोड़ा ऊपर जाता है, स्पाइक करता है। देन रेगुलर वॉकिंग बिकॉज योर बॉडी वर्क्स हार्डर टू स्टेबलाइज ईच रिवर्स स्टेप। तो दोस्तों ट्राई कीजिएगा, अगर आप प्रोन है टू फॉलिंग तो बिल्कुल नहीं ट्राई कीजिएगा। और अगर आप काफ़ी स्टेबल है वॉकिंग वाइज में एंड एवरीथिंग तो आप यू नो इसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे जगह पर हो जहाँ पर यू नो यू नेवर नो कि आप अपने बैलेंस को लूज कर सकते हैं। सो ऐसे जगह पर हो जहाँ पर अगर गिरे तो उतना चोट नहीं लगे आपको। ओह माय गॉड, गिरते हैं तो चोट तो लगेगा ही, लेकिन आपको बस फोकस करना है, कोऑर्डिनेट करना है अपने आप को। रिवर्स वॉकिंग ट्राई कीजिएगा जस्ट फॉर 1 मिनट अ डे एंड देखे इसकी खूबियाँ क्या है। एक्चुअली मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ क्योंकि मुझे आज ही ये मिला एंड आई वॉज थिंकिंग कि शेयर करते हैं और इसको काम में भी लाते हैं। और एंटी एजिंग भी है, सो आई थिंक ये बहुत काम में आने वाला है। चलिए दोस्तों और एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता। अगर तुम ना मिलते, अगर तुम ना मिलते, मोहब्बत का नगमा जुबान पर ना आता।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीन प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
9: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: दोस्तों, एक मिनट हो गए हैं 8:00 और एक घंटे का सफर बाकी है हमारे और आपके साथ का। और दोस्तों, ब्रिस्बेन में 16 डिग्रीज है, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत करते हैं आपका, कहना चाहेंगे वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Indian fashion ka jab bhi zikra hota hai, to log Rani Creations ko yaad karte hain, kyunki Rani Creation mein sabhi kuch uplabdh hai. You get men's and ladies' wedding suits and accessories, top quality designer saris, lehengas, salwar kameez, party wear and men's shirts and suits. You can also order tailor-made suits from Rani Creations. Itna hi nahi, original DVDs, CDs, phone cards, prepaid charge cards, fancy jewelry, bangles, giftware bhi uplabdh hai. For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balclava Street, Woolen Gabba, open daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: वेलकम बैक दोस्तों, और ट्रैफिक अपडेट देते हैं. जुबली टेरेस बार्डन, यहाँ पर सिग्नल फॉल्ट हजार्ड है, नो ब्लॉकेज ऑल डायरेक्शंस. और चलिए आगे बढ़ते हैं. वैसे कहते हैं, डोंट लेट योर एम्पैथी रॉब पीपल ऑफ एक्सपीरियंसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस. तो कितनी बार ऐसा होता है जब हम किसी से सिंपथी रखते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर किसी से एम्पथी रखते हैं तो हम उसके दुख जो है वो हम खुद सहना चाहते हैं. और क्या होता है कि अगर कोई चीज़ कोई कुछ करता है, और अभी जैसे अपने बच्चों को ले लेते हैं, अगर वो कोई बदमाशियाँ करते हैं या कुछ समझ लो टीनेज सन है या यंग अडल्ट है, अगर आपने कुछ बताया है उसको और उसके बावजूद भी वो जाकर कुछ करते हैं, और उसके बाद उसको कुछ स्ट्रेस मिलता है या शायद उन्होंने बाय कर ली, समझ लो एग्जांपल देते हैं, और उसमें ढेर सारी कुछ फॉल्स निकल आते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ ब्रांड न्यू कार, सो उन्होंने बाय किया लेकिन तो आपने बताया था लेकिन उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं. और जब ऐसे फॉल्ट निकलते हैं तो उनके जो फाइनेंशियल है थोड़ा उसको धक्का लगता है, राइट? लेकिन उसको भी दुख भी आता है. अभी आप जो वो पीरियड से गुजर रहा है उसमें आप अगर इंटरफियर करेंगे तो जो सीखना है वो लेसन वो सीखेगा नहीं. सो अगर आप चलो बेटा चलो हम दे देते हैं, इट्स ओके, राइट? लेकिन तो वो जानता है कि एनी टाइम एनीथिंग लाइक दिस हैपन्स माय डैड और मॉम इज गोना कम एंड सेव मी. तो वो जो लेसन उसको सीखना था उसने सीखा नहीं. तो फिर जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब आप नहीं रहते हैं और आपके बच्चों को ऐसा कुछ हो जाता है, देन हु इज गोना कम एंड सेव देम? द बैंक इज गोना कम एंड सेव देम बट विद लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो जब ऐसा सिचुएशन आते हैं तो यू जस्ट हैव टू लेट देम बी, यू बी देयर, आप वहां रहें उनके साथ. ऐसा नहीं कि उसको छोड़कर चले जाए मझधार में, तो जस्ट बी विद देम, बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. वहां पर आपको नहीं कहना है कि आई टोल्ड यू सो, आपको ऐसा नहीं कहना है, कम ऑन. लेकिन आप वहां एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह अपने चाइल्ड के साथ आप वहां रहेंगे. और एक ये केवल आपके बच्चे के साथ नहीं होता है, लाइफ में ढेर सारी ऐसी चीजें होती है. आपके दोस्त के साथ हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स के, आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है. आपने शायद कुछ कहा और उन्होंने नहीं सुनी और देयर इज समथिंग हैपनिंग, यू कैन ओनली डू सो मच. लेकिन अगर कोई चीज उनको सीखना है तो वो जब एक्सपीरियंस करेंगे तो ही सीखेंगे. एंड इट ऑल्सो हमारे ऊपर भी ऐसा ही है. अगर हमें कुछ सीखना है और जब तक कोई यू डोंट आस्क कि आपको कोई आके वहाँ से बचाए, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू शेड सम टीयर्स एंड वो हार्ट एक जो होना है वो उसको एक्सपीरियंस करें. यही तो लाइफ है. एंड आई थिंक इसमें भी मज़ा है, यू नो, बिकॉज आप जानते हैं कि इसके बाद भी, इसके बाद जो आएगा वो अच्छा होगा. एंड आई थिंक दोस्तों इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि दिमाग में ये रखे कि जो बैड टाइम्स चल रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं होता. एंड और ये भी बात हमेशा याद रखे कि कोई चीज़ अगर आपके ऊपर आया है, जैसे कि कोई बैड टाइम चल रहा है, वो आपको बगैर सिखाए जाएगा नहीं. सो अगर आपको सीखना है, आपको जल्दी जल्दी सीखना है, अदरवाइज इज नॉट गोना गो विदाउट टीचिंग योर लेसन. सो या थिंक अबाउट इट. चलिए आगे बढ़ते हैं.

0: दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे और आधे घंटे का सफर बाकी है हमारे आपके साथ का। और चलिए रिमाइंड कर दें आपको कि 9 पर जुम्मा प्रोग्राम है। हमारे पास एक गुलजार साहब की एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी है। अर्ज है, मैंने मौत को देखा तो नहीं, मैंने मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी। कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना ही छोड़ देता है। बहुत ही खूबसूरत थी ये शायरी। चलिए एंजॉय करते हैं ये गीत
1: गारवा 2.0 पर।

तू सुबह बन के आता है, मैं शाम के जैसे ढलती हूँ। अब इससे ज्यादा कौन मरे, मैं तुम पे जितना मरती हूँ।

हर बार सफर तेरा मेरा एक मोड़ पे आके रुकता है, हर बार का यही किस्सा है। मुड़ जाने से मैं डरती हूँ, रुक जाती है धड़कन मेरी, सांसें भी सांस नहीं लेती। अब इससे ज्यादा कौन मरे, मैं तुम पे जितना मरती।

तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे। और जो कि वेदर चेंज हुआ है, स्प्रिंग है एंड इस टाइम पर आप फेस करेंगे स्टॉर्म्स एंड ऑल एंड हैवी रेन्स। और अभी देखो रात में बारिश, लाइट बारिश होती है, सो बहुत अच्छा है। एंड आपके गार्डन को वाटर मिलता है एंड एवरीथिंग। लेकिन किस तरह से अपने आप को, अपने घर को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप गटा, अगर गटा गार्ड नहीं है तो वो आपको गटर क्लीन करना होगा। और ढेर सारे लीव्स अभी ड्यूरिंग विंटर वहाँ पर बिकॉज ऑफ ढेर पत्तियाँ गिरती हैं विंटर के टाइम, तो दिस इज़ द टाइम आप क्लीन अप करें एंड ओवर हैंगिंग ब्रांचेस हो उसे काटे, ट्रिम करें, एंड अपने जो इमरजेंसी किट्स है उसको प्रिपेयर करें। और एसी, अगर आपके जो एसी सिस्टम है उसको आप सर्विस करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि ड्यूरिंग विंटर वो में रहता है और समा के टाइम, और अभी वो वेदर होने को है, तो ऑब्वियसली उसका जो वेंट है ढेर सारे बग्स हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं कलेक्ट। यू वुड थिंक, यू वुड एक्चुअली स्मेल कि जब आप वॉर्म से कूलर एयर पर चेंज करोगे अपने जो मोड है, देर इज़ अ मस्टी स्मेल एंड दिस इज द साइन ऑफ कि बैक्टीरिया है। तो आप सर्विस कराएंगे, वो अच्छी तरह से उसको क्लीन कर देंगे एंड ताकि आपको अफेक्ट ना करे आपको ब्रीदिंग का, आपके घर पर बच्चे हैं एंड खुद अगर आपको एलर्जीज है डस्ट से या फिर किसी तरह का भी एलर्जी है, तो आप यू विल बी जस्ट जस्ट सेफ। और अपने रूफ्स को जो है चेक करें खुद, अगर आपको डर है कि आप गिर जाएंगे या कुछ, तो आप लगाएं पीपल को, वो आकर आपके रूफ को क्लीन कर सकते हैं, गटा को क्लीन कर सकते हैं, अच्छी तरह से रूफ को चेक कर सकते हैं, देयर इज एनी लीक एंड स्टफ। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और ड्यूरिंग दिस टाइम स्टॉर्म टाइम तो विंडी भी रहेगा, तो अगर लूज चीज़ कहीं पड़े हुए हैं तो मेक श्योर कि उसको भी आप अच्छी तरह से सिक्योर करें। और घर पर पेट्स है तो एम्प्टी कंटेनर्स ये एंड स्टफ, अगर स्पेशली अगर आपके एरिया में स्नेक्स आते हैं तो ऐसा करें कि अगर आप गार्डनिंग एंड स्टफ करते हैं तो अगर मन्यूआ एंड सोइल अगर आप रखे हुए हैं बाहर तो स्टेक करके, तो ज़रा बच के रहें, क्योंकि यू नेवर नो कि कहाँ पर स्नेक आकर रुक सकता है। और स्पेशली आपके घर पर अगर पेट है तो उसको अटैक हो सकता है। तो और ढेर सारे अगर लीव्स है तो मेक श्योर यू आर कलेक्टिंग द लीव्स। एंड अब तो सभी के घर पर ग्रीन बीन्स भी आ गया है, तो आप वहाँ पर अपने बीन, अपने जो लीव्स है कलेक्टेड वो ग्रीन्स के लिए तो रख सकते हैं। देर इज़ नो एक्सक्यूज कि आप बटोर नहीं रहे हैं। अगर आप अपने पेट को सेफ रखना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा अच्छी तरह से। स्पेशली और ये भी है कि अगर छोटे बच्चे हैं, क्यूरियस रहते हैं, बाहर जाते हैं और वो मैदा में ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अप, तो आप यहाँ रहते हैं तो इससे बच भी नहीं सकते। यू हैव टू लव एवरीथिंग अराउंड यू, सो सभी चीज़ को प्यार करना है, अब सभी के साथ जीना है। तो बस अपनी अपनी जो टेरिटरी है उसको अच्छी तरह से क्लीन करके धरे, यही कहना चाह रहे हैं हम दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं ये गीत।

तो बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। अगर जो आपके घर में हाउस प्लांट्स है, अगर बोस्टन फर्न आपके घर में है, तो कहते हैं कि अगर जो डाइल्यूटेड वाला ग्रीन टी है, अगर समझो आपने टी बैग यूज़ किया हुआ है, ग्रीन टी में आपने ग्रीन टी बनाया है, तो वो जो जो यूज्ड वाला बैग है आप और भी उसमें बना सकते हैं, उसको जो ग्रीन टी है कूल्ड वाला आप बोस्टन फर्न में डालते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा उसका ग्रोथ होता है एंड एकदम फ्रेश और हेल्दी लुकिंग प्लांट हो जाता है। और जैसे लास्ट वीक हमने शेयर किया था बनाना पील वोटा, और ये बोस्टन फर्न को लेके है, वो स्नेक प्लांट, बनाना पील स्नेक प्लांट के लिए बहुत अच्छा है वोटा। और ये कूल्ड ग्रीन टी अगर आप बोस्टन फर्न में डालते हैं तो वो पेड़ के लिए बहुत अच्छा है। और अफ्रीकन वायलट्स अगर आप धरते हैं घर पर, और बहुत ही डेलिकेट लीव्स है और बहुत ही खूबसूरत पर्पल फ्लावर्स आते हैं इसमें, और ये डाइल्यूटेड ब्लैक टी इसको पसंद है। इंसान के साथ साथ अभी पेड़ भी चाय पीने लगे। ओह गुडनेस। एनीवे या सो आप ट्राई कर सकते हो और अपने पेड़ों में डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, अब तो जाने का वक्त हो गया है और आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया और आशा है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे आपके लिए। हैव अ लवली डे, ब्यूटीफुल वीकेंड। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन, नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति राज रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिम्बा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताउवा स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79.1 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह व बरकातहू हो। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। मैं आपको याद दिला दूं कि हर रविवार के सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें आप सुन सकते हैं सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ। और हर जुमे के दिन फ्राइडेज को आपके लिए 9 से लेकर 9:30 बजे तक महरूम हजरत मौलाना बशीर अहमद दीवान के साथ आप सुनते हैं जुमा बयान। और फिर 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में ओल्ड विंटेज कवालीस, हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए ओल्ड विंटेज कवालीस।

0: और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर। हर जुमे के दिन शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। आज जुमा है, 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं महरूम बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद हम करीबन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ऑल विंटेज कवालियाँ। अगर एक बार तक के लिए आपको साथी फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप तैयार हो भक्ति में डूब जाने के लिए? भक्ति रास रामायण मंडली, एलजी बॉयज और सनातन क्वींसलैंड मिलकर पेश करते हैं ग्रैंड कीर्तन नाइट, सैटरडे सितंबर 12, 2026 फ्रॉम 5:30 PM टिल लेट नाइट एट सनातन कल्चरल सेंटर, 550 वेम्बली रोड, बेरिंबा, क्वींसलैंड 4117। अमित कुमार, बाबा सीगा स्टार, सलीम प्रसाद, पिंकी ऑफ गोल्ड टाउन और ताऊआ स्टार की सुरीली आवाजों में कीर्तन का आनंद लें। एंट्री प्राइस सिर्फ $30 पर पर्सन, जिसमें डिनर इंक्लूडेड है। 10 इयर्स से छोटे बच्चों के लिए एंट्री फ्री। इस ग्रैंड कीर्तन नाइट की सारी प्रोसीड्स जाएंगी सनातन कल्चरल सेंटर को। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट सालीन सिंह ऑन 0488623459 या बीरेंद्र सिंह ऑन 0409390583 या फिर बाबा ऑन 0413701651।